ਵੱਡੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਖਤਾ ਕਰ।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलो हर्ट्स ते। तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप ऐं DD फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। अॼु ॿुधरु आहे, जून महीने जी 24 तारीख़। हिन वक़्तु भारत में सुबुह जा 6:30 थी चुकिया आहिनि। असांजे प्रोग्राम जो आगाज थी चुको आहे। प्रोग्राम जा तफ़सील कुझु हिन रीत आहिनि। थोरी देर में तव्हां भक्त कंवर राम खे ॿुधंदा। तंहिंखां पोइ 6:35 ते तबसरो पेश कयो वेंदो। तंहिंखां पोइ 6:40 ते फिल्मी गीत पेश कया वेंदा।

प्रोग्राम के आखिर में खास खास खबरों नशर कई वेंदू इत हुई असाजे प्रोग्राम की तफसील हेर अचो तो बुध भक्त कंवर राम की मिठड़ी आवाज में कलाम।

है बाग बामाली बुलबुलियों सब चाहे तू एक बाग जो गुल या एक बाग जो बूटा असा के दे जो सा जो जिया पो आए माली उन के जवाब दिनो ओ माली के तौजो तौजो भुलजो भुलजो मरी वयो

ਲੈ ਲਈ ਬੱਚੇ ਵੇਦ ਉਸਦਾ।

0: भगत कौराम साहब जी मिठले आवाज में कलाम दे रही आकाशवाणी जी सिंधी सरिस्ता है हिर पेश है तबसरो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुमर डिया रिपब्लिक समिट की किताब कंदे चयो तो गुजरेल दहाके दौरान हिंदुस्तान जे शानदार कामयाबिन ए आलमी सतह ते एक काबिल एतमाद ताकत तौर उभरन जे पोया कौम सबका पहरी यानी नेशन फर्स्ट जो उसूल बुनियादी रहनुमा रहो आहे। प्रधानमंत्री तकरीब जे मंत्रमजन के मुबारकबाद दींदे चयो तो अजीम ताकत हिंदुस्तान कौम सबका पहरी जड़ी अहम मौजू ते बहस अड़े वक्त थी रो है जडे दुनिया तेजी से अहम तब्दीलिन में गुजरी रही है। उन्हें चयो तो हिंदुस्तान एक कदीम तहजीब है जै वट डिघी तारीख यादगिरी मौजूद है जेका तरीकी ए मुश्किलातन बिन्हीं में सबक हासिल करण की मुनफरद सलाहियत रखे थी। जी सत सरबराह इजलास जो जिक्र कंदे प्रधानमंत्री चयो तो दुनिया जी अगवान हिंदुस्तान जे कौम सब का पहरी वारे उसूल सा मजबूत वास्तगी के तस्लीम कन था यो उसूल मुल्क जे पॉलिसिन तरजीहन ए तरक्याती सफर जी रहनु

माई कंदो रहे थो। गुज़िरियल 12 सालनि जी हुकूमती कारकरदगी ते रोशनी विझंदे प्रधानमंत्रीअ चयो त स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी जे वाधारे ऐं मक़ामी शयुनि जे इस्तेमाल जहिड़ियूं क़ौमी मुहिम इन करे कामयाब थियूं छाकाणि त शहरनि क़ौमी मुफ़ाद खे तरजीह ॾिनी। हुन क़बाइली ऐं खाबे धुरीअ जे इंतिहा पसंदी खां मुतासिर इलाइक़नि में आयल तब्दीलीअ जो ज़िक्र कंदे चयो त जेके इलाइक़ा अॻु तशदूद ऐं पसमांदगी जा शिकार हुआ उते हाणे बेमिसाल तरक़ी थी रही आहे। गुज़िरियल ॾहाके दौरान इन्हनि इलाइक़नि में 12,000 किलोमीटरनि खां वधीक रस्ता, 9,500 खां वधीक मोबाइल टावर, बैंकिंग सहूलियतूं, पोस्ट ऑफिसूं ऐं मुवासताती नेटवर्क क़ाइम कया विया आहिनि। प्रधानमंत्रीअ चयो त माओ नवाज़ तशदूद जंहिं गुज़िरियल ॾहाके में हज़ारे ज़िंदगियूं विञायूं वयूं हाणे पंहिंजे आख़िरी मरहले में आहे, जंहिंजो सबब मज़बूत सिक्योरिटी क़दमनि सां गॾु तेज़ रफ़्तार तरक़ियाती कम आहिनि। हुन बस्तर ओलंपिक्स जी कामयाबीअ खे उन ॻाल्हि जो सबूत करार ॾिनो त हाणे नौजवाननि जूं उमेदूं ऐं सलाहियत ख़ौफ़ जी जाइ वठी रहियूं आहिनि। हुन चयो त हिंदुस्तान हाणे मायूसीअ वारे दौर मां निकिरी एतमाद ऐं मौक़नि वारे दौर में दाख़िल थी चुको आहे। तब्दीली मुमकिन आहे वारो यकीन मुल्क जी सभ खां वॾी ताक़त बणिजी वियो आहे। प्रधानमंत्रीअ मुज़िब एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऐं एस्पायरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम मुल्क जे पुठिते पियल इलाइक़नि खे तरक़ीअ जे मर्कज़नि में तब्दील करे रहिया आहिनि, जंहिं सां लखे माण्हुनि जी ज़िंदगीअ जो मयार बहितर थियो आहे। हुन चयो त तरक़ी जा फ़ाइदा सिर्फ़ फरीदनि ताईं महदूद न आहिनि पर सॼी समाज जी खु़शहालीअ जो सबब बणिजनि था। ताज़नि सालनि में लॻभॻ 25 करोड़ माण्हू गुरबत मां निकिरी नए विचोले तबिके जो हिसो बणिया आहिनि, जंहिं सां मुआशी सरगर्मियूं ऐं मौका वधिया आहिनि। गुरबत जो ख़ात्मो सिर्फ़ फलाही मक़सद न पर तरक़ी, ख़्वाहिशनि ऐं समाजी तरक़ीअ जो बि ज़रियो आहे। प्रधानमंत्रीअ चयो त गुज़िरियल ॾहाके दौरान विचोले तबिके जी ज़िंदगीअ आसान बणाइण हुकूमत जे अहम तरजीह रही आहे। हुन चयो त अधूरी रहियल रिहाइशी मनसूबनि खे मुकमिल करण लाइ 25,000 करोड़ रुपयनि जो ख़ासि फंड क़ाइमु कयो वियो, जंहिं सां हज़ारे घर ख़रीदड़ खे संदन घर मिलिया आहिनि। हुन वधीक चयो त सस्ती हाउसिंग फाइनेंस, डिजिटल ख़िदमतुनि ऐं बहितर शहरी ढांचे सबब शहरनि जे ज़िंदगीअ जो मयार बहितर थियो आहे। SWAMIH फंड जहिड़नि क़दमनि ज़रिए हज़ारे अधूरा रिहाइशी यूनिट मुकमिल करे मालिकाने हवाले कया विया आहिनि। प्रधानमंत्रीअ चयो त गुज़िरियल ॾहाके दौरान हिंदुस्तान जे ट्रांसपोर्ट ऐं राबतनि वारे ढांचे में वॾी वाधि थी आहे। अॼु मेट्रो रेल ज़रिए रोज़ाना 1 करोड़ खां वधीक माण्हू सफ़र कनि था, जॾहिं त वंदे भारत, नमो भारत ऐं अमृत भारत ट्रेनूं मुल्क जे राबतनि खे वधीक मज़बूत बणाई रहियूं आहिनि। हुन चयो त टैक्स सुधारनि ऐं टेक्नोलॉजी ते ॿधल शफ़ाफ़ निज़ाम सबबि टैक्स अदा कंदड़नि लाइ सहूलियतूं वधियूं आहिनि, जॾहिं त ऑनलाइन फाइलिंग ऐं फीस लेस अमलनि सां शफ़ाफ़ियत ऐं आसानी आई आहे। प्रधानमंत्रीअ जे शबे में हुकूमत जी कोशिशुनि जो ज़िक्र कंदे चयो त जिन औषधनि केंद्रनि ज़रिए सस्ती दवाऊं मुहैया कयूं पियूं वञनि, जॾहिं त बुज़ुर्ग शहरनि लाइ मुख़्तलिफ़ सिहत मनसूबनि तहत तबी तहफ़ूज़ बि फ़राहम कयो पियो वञे। हुन चयो त हिंदुस्तान जे तरक़ीअ सां माण्हुनि जी उमेदूं वधियूं आहिनि ऐं उहे बहितर ढांचे, तेज़ ख़िदमतुनि ऐं आला मयार ज़िंदगी जा ख़ुशामंद आहिनि, जेको मुल्क जे मुस्तक़बिल बाबति एतमाद जी निशानी आहे। प्रधानमंत्रीअ चयो त हिंदुस्तान जा नौजवान सनतकार, ज़िदत आणींदड़ ऐं स्टार्टअप आलमी सतह ते पैदा थींदड़ नवनि मौक़नि मां फ़ाइदो वठण में अॻबरा आहिनि। हुन ज़ोर ॾिनो त हुकूमत क़ौम सभिनी खां पहिरीं जे असूल तहत सुधारनि, ज़िदत ऐं शहरी मर्कज़ हुकमरानी लाइ पुरअज़म आहे। आख़िर में प्रधानमंत्रीअ नौजवाननि समेत सभिनी शहरनि खे अपील कई त हिंदुस्तान जे तरक़ियाती मक़सदनि ऐं क़ौम सभ खां पहिरीं जे असूल ते अमल कंदे क़ौमी तामीर में मुस्बत किरदार
किरदार अदा

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ से। अलावा तमाम आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश से बुझी सकता है। एशियन फिल्मी गीत प्रोग्राम जो आगाज कर रहा हूं राम पंजवाणी के आवाज में झूलेलाल उस्तुति से फिल्म है झूलेलाल।

जग जले जन की चौधारी, दुकान दी दो सो दिलदारी, जिंदल जहरी मेहर मया जो मिलणो ना हिन साल, जिंदल जहरी मेहर मया जो मिलणो ना हिन साल।

0: नक उतारे तो निजाकत सा निहारे तो नजर जो तीर मारे तो तबारण खूब बारे तो असांजो असांजो असांजो कानो भी हलो
1: साहब रे असांजो कानो भी हलो साहब रे असांजो

तॾहिं तो कन ॾिए काको जॾहिं को ज़ोर सां ॻाए तॾहिं हू कंध फेराए असांजो असांजो असांजो ॿोड़ो बि अघाणो हलो असांजो ॿोड़ो बि अघाणो हलो।

न दिल जो हाल ओरे न देखे वे वराए न दिल जो सुर सुनाए।

हाणे तव्हां शल धीअर न जमन फिल्म जो गीत ॿुधी रहिया हुया। अचो त हाणे ॿुधूं संत कंवर राम जो गीत।

0: काफी मिनट मोहम्मद रही आकाशवाणी जी सिंधी सरिस्ता है और पेश हैं खास खास खबरों।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयो आहे त ब्रिक सिक्योरिटी तआवुन खे वधीक मज़बूत बणाइण ऐं दहशतगर्दी ऐं साइबर सिक्योरिटी जहिड़ी ललकारुनि खे मुंह ॾियण में अहम किरदार अदा करे थी। भारत पाकिस्तान पारां बेक़ाइदे खयल कश्मीर यानी पीओके जे सूरत हाल बाबति इस्लामाबाद जे बयाननि खे रद्द कंदे उन्हनि खे पंहिंजी नाकामियुनि खे लिकाइण जी बेचैनी वारी कोशिश करार ॾिनी आहे। परडेही मामलनि जे वज़ीरत मौजब अमरीका ऐं ईरान जे विच में सूझबूझ जो चिठो खां पोइ 11 भारत ॾांहुं वेंदड़ जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ मां गुज़री चुकिया आहिनि। यूएन जे सरबराह अंतोनियो गॉटरेस मसनूई ज़हानत कंपनियुनि खे अपील कई आहे त हू मुहालियत असरनि बाबति रिपोर्ट जारी करनि ऐं साफ़ तवानाई जो वाइदो करनि। भारतीय मर्दनि जी हॉकी टीम लंडन लेग ऑफ FIH प्रो लीग जे ओपनिंग मैच में पाकिस्तान खे 4-6 खां शिकस्त ॾिनी। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल थोरी देर में हॉस्टन में ग्रुप मरहले जे मैच में उज़्बेकिस्तान सां मुकाबलो कंदो।

तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो 6:30 वॻे। तेसि ताईं ॾींदा मोकल सदाई गॾु।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए

0: खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: We need to be cognizant of new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. National security advisors and senior security officials from the BRIC nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisors meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of Indian nationals in the accident at Ras Laffa Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 7:10 और पूरे 15 सेकंड। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शीतल चौहान द्वारा गाए भजन। सहयोगी कलाकार रहेंगे सरोद पर दानिश असलम, बांसुरी वादन विनय प्रसन्ना का, हारमोनियम पर नफीस खान और तबले पर संगत दी है पशुपतिनाथ मिश्रा ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने सुना शीतल चौहान द्वारा गाए भजन। साथी कलाकार थे सरोद पर दानिश असलम, बांसुरी वादन था विनय प्रसन्ना का, हारमोनियम पर नफीस खान और तबले पर साथ दे रहे थे पशुपति नाथ मिश्रा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग।

जी हाँ दोस्तों, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है और आपको बुला रही हूँ मैं, आपकी दोस्त आरती गौड़, इस सफर में जिसका नाम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आरती गौड़, आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, छुक छुक की आवाज, लोहे की पटरियों की खनक, खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़ पौधे, याद आया कुछ? आज हम बात कर रहे हैं ट्रेन की, जी हाँ, जिसमें आपने न जाने कितनी बार सफर किया होगा, कितनी बार उस गाड़ी ने आपको बुलाया होगा, कितनी बार आपके लिए सीटी बजाई होगी, भागते दौड़ते हुए आपने उसे पकड़ा होगा और उस ट्रेन के साथ बहुत सारी यादें भी आपने बनाई होंगी। तो बस आज उसके बारे में ही आपसे कुछ बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनेंगे इस खूबसूरत से गीत को।

तो गाड़ी की बात हो, ट्रेन की बात हो और इस गीत की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। छैया छैया किया था हमारे शाहरुख खान साहब ने खुद ट्रेन के ऊपर, साथ में थी मलाइका अरोड़ा। ये शानदार नजारा तो आप सबको याद आ गया होगा, लेकिन अब आपको याद दिलाते हैं कि ये जो ट्रेन है जिसमें सफर करके हम बड़े खुश होते हैं, अपनी जगह पर पहुंचते हैं जहां हमें जाना होता है, और आजकल तो ट्रेनें भी आधुनिक हो रखी हैं और बहुत जल्दी जल्दी हमको कहीं ना कहीं पहुंचा देती हैं जहां हमको पहुंचना होता है। पर ये सफर शुरू कैसे हुआ था? ट्रेन ने भी तो कभी शुरुआत की होगी ना, कभी तो आई होगी वो हम सब के भारत में और कभी तो आई होगी हम सब की जिंदगी में। तो चलिए आपको इतिहास के पन्नों के बीच ले चलते हैं और बताते हैं कि बात है 16 अप्रैल सन 1853 की। दोपहर के बज रहे थे 3:35। बोरी बंदर जो मुंबई आज कहलाता है, उस वक्त कहा जाता था बॉम्बे। वहां से ठाणे जो स्टेशन था, वहां से उसके बीच में देश की पहली पैसेंजर ट्रेन दौड़ी थी। वो सफर सिर्फ 34 किलोमीटर का था, जिसमें अगर डिब्बों की बात की जाए तो 14 डिब्बे थे और यात्रियों की बात की जाए तो 400 यात्री सवार थे। लेकिन जब उस भाप के इंजन ने सीटी मारी तो उस वक्त के हालात ऐसे थे कि जब लोगों ने ये सब देखा, जिनके लिए ये एकदम नया नजारा था, उनमें से काफी लोग घबरा गए, काफी लोग सोचने पर मजबूर हो गए। कुछ ने तो उसे लोहे का राक्षस तक कह दिया कि ये देखो धुआं उड़ रहा है और किस तरीके से भाग रही है। पहला जो सफर था वो 57 मिनट में पूरा हुआ था, बोरी बंदर से ठाणे तक का। और उस वक्त ये जो सफर था ये पहली बार पैसेंजर्स के लिए था, क्योंकि उसके पहले जो चलते थे उसमें माल ढुलाई का काम जो होता था वो किया जाता था, लेकिन पैसेंजर्स के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। और ये ट्रेन चलाई तो अंग्रेजों ने थी अपने मकसद को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो तो चाहते थे कि पूरे देश पर उस तरीके से कब्जा कर लिया जाए और सब तरफ हमारा ही बोलबाला हो। कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए, लेकिन बाद में यही ट्रेन बनी सहारा हम सब भारतीयों का, और आजादी के जो सफर है ना उसमें भी योगदान बहुत बड़ा था इसका। तो आगे भी हम इसके बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में छैया छैया भी तो जरूर।

तो दोस्तों मजा आ रहा है ना मेरे साथ इस ट्रेन के सफर को करके, कुछ यादें ताजा हो रही हैं आपकी तो जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेन से जुड़ी बहुत सारी जो आइकॉनिक मोमेंट्स है वो हमारे सिनेमा को भी मिले हैं। वैसे जब ट्रेन चली थी तो उसमें धुआं बहुत निकला करता था जिससे प्रदूषण बहुत होता था, और जाहिर सी बात है उस समय के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आगे चलकर भाप के जो इंजन थे उनका उस वक्त बहुत रौब था, लेकिन आगे चलकर जो कोयले की महक और छुक छुक करती जो आवाज थी उसने रफ्तार को कम किया, जो कि आगे आ गई थी इलेक्ट्रॉनिक। यस, समय बदला। 1925 में देश को मिली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। इसके बाद तो जैसे भारतीय रेल अपनी ही अलग दुनिया में सवार हो गई। देश के कोने कोने को आपस में जोड़ने वाली इस रेल ने न जाने कितने परिवारों को मिलवाया, कितनी नौकरियों की शुरुआत की और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी ये बन गई। तो रेल का जो सफर है ना वो सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि इस सफर के अंदर

आप सुन रहे हैं ये है फिल्म आराधना से किशोर कुमार ने इसे अपनी आवाज से सजाया है। लेकिन इस फिल्म की एक खास बात और भी है, ये जो फिल्म है इसमें राजेश खन्ना जो झूठ में मजे से पीछा कर रही है हमारी फिल्म डायरेक्टर नट टैगोर जी का, एक्चुअली शूट के टाइम में वहाँ पे थी ही नहीं क्योंकि ये शूटिंग साथ में होनी थी लेकिन वो कहीं और पर बिजी थी। तो उस टाइम में कई शेड्यूल में काम किया करते थे जो कलाकार, वो ये जो फिल्म की सीन थी जिसमें शर्मिला जी बैठी है और वो शर्मा रही है और बहुत प्यार से बार बार नजरें चुरा चुरा के राजेश खन्ना जी को देख रही है, उसकी बाद में शूट करके एक साथ जुड़े हुए और देखिए फिल्म का और रास्ते का जो सफर है उन्हें इस तरीके से मिलाया गया कि जैसे ये सफर अपने आप में एक रंगीन सफर बन गया और इस सफर पे हम तब से लेकर आज तक चलते जा रहे हैं।

अब जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पे और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती गौर। कार्यक्रम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग, जिसमें आज हम निकले हैं ट्रेन के सफर पे। बहुत सारे खूबसूरत से गीत मैं आपके लिए ट्रेन से जुड़े हुए लेकर आई और उसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जरूर आपकी भी कोई ना कोई ट्रेन से जुड़ी याद इसके साथ चल रही होगी। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आप भी उन यादों में जरूर खो गए होंगे और आप बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा ट्रेन का ये सफर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे इस गीत की तरफ।

हाँ, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के यार आने हैं। ट्रेन भी कुछ ऐसा ही कहती है कि जब उसमें आप बैठते हैं तो अनजाने अजनबियों से आप मिलते हैं। बहुत सारे लोग गलत भी होते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते, लेकिन बहुत से लोगों से दोस्ताना कुछ इस तरह जुड़ जाता है कि सफर खत्म हो जाए लेकिन साथ खत्म नहीं होता। उनके साथ में रिश्ता जुड़ा रह जाता है, उनकी मीठी यादें अपने मन में बस के रह जाती हैं। ट्रेन भी तो हमें कुछ ऐसा सिखाती है कि आपके जीवन में हमेशा एक अलग पड़ाव आएगा, आप उस पर उतर जाएंगे लेकिन ये ट्रेन चलना नहीं छोड़ेगी। यानी कि वो आपको सिखाती है कि जिंदगी भी ऐसी ही है, जिंदगी का एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर आपको उतरना होगा, लेकिन इसकी जिंदगी रुकने वाली नहीं है, वो आगे बढ़ती रहेगी। फिलहाल स्टीम इंजन से शुरू हुआ ट्रेन का ये सफर आज वंदे भारत तक पहुँच चुका है। उसके लिए आगे अभी बहुत करके जाना है, बहुत कुछ दिखाना है ट्रेन को, लेकिन ये मैं चाहूंगी कि ये पटरी पर यूं ही दौड़ती रहे और हमारी जिंदगी में इसी तरीके से खुशियां भरती रहे। फिलहाल आप सबसे विदा लेने का वक्त आ गया है, अपनी दोस्त आरती को इस सफर से दीजिए इजाजत, लेकिन आपका और मेरा साथ तो

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लापान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमरीका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर

0: भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निरस्त नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान की तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है और हम लोग का ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र

0: जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि हुर्मुज जलदमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेनसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रेशो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अनलीनों के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरूद्व अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है।

0: मतलब भारत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और हॉर्मोज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies

0: बातचीत अमेरिका की महसूल से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की वजह से इस साल के शुरू में तय किए गए एक फ्रेमवर्क में रुकावट की वजह से की जा रही है। तिजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारत के नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के सफीर सर्गियो गौर से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: दोनों मुल्कों का मकसद 24 जुलाई से पहले एक उमूरी तिजारती मुआहदे की तकमील करना है। जब तिजारती शराकत दारों से बरामद किए जाने वाले सामान पर अमरीका के आर्जी 10% महसूल की मुद्दत खत्म हो जाएगी। 20 फरवरी को अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने इन बेहद महसूलात को खत्म करने का हुक्म दिया था। इसकी वजह से अमरीकी इंतजामिया को सभी मुल्कों पर तजारती कानून की 122वें शक के तहत 150 दिन के लिए 10% आर्जी महसूल लागू करना पड़ा था। यह सिलसिला 24 फरवरी को शुरू हुआ था जो 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। मुतरफा तजारती कशीदगी में कमी आ जाने के बाद अब अमरीका में ज्यादातर भारतीय अशिया पर मुतरफा तजारती महसूल में कमी करके इसे 18% कर दिया है और इससे पहले के 25% महसूल को खत्म कर दिया है। भारत ने भी बहुत सी अमरीकी सनती और जरिए अशिया पर महसूलत में कमी करने या इन्हें हटाने की तजवीज पेश की है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबर के लिए मैं असलम बेग।
0: इससे पहले जनाब गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भारत अमेरिका दो तरफा तिजारती मुआहदे पर नतीजा खेज बातचीत के बारे में पूर्ण उम्मीद हैं। इस दौरान जनाब गोयल ने भी सोशल मीडिया पर एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक ऐसे दो तरफा मजबूत तिजारती मुआहदे को कतई शक्ल देने की जानिब फैसलाकुन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के लिए नए इकतसादी मौके पैदा होंगे और खासतौर पर अमरीका भारत इकतसादी शराकतदारी में गहराई पैदा होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बकौल उसके एक तारीखी अमन मुआहदे के हिस्से के तौर पर ईरान इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कभी न्यूक्लियाई हथियार हासिल नहीं करेगा। इस मुआहदे के सबब अबनाए हुरूज में कशीदगी का खात्मा हो गया है। पेंसिल्वेनिया के शहर मैकनगी में मैन ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जनाब ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकना इस्लामी जमहूरिया की जानिब उसकी इंतजामिया की पॉलिसी का असल मकसद है। जनाब ट्रंप ने ये बात जोर देकर कही कि ईरान की फौजी सलाहियत में शदीद कमजोरी आ गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मईशत और दिफा के शोबे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक मगरबी एशिया खित्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हमले जारी रखेंगे और मिलिटेंट सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे, पायदार अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता है। खलीज फारस के खित्ते के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर अबू धाबी पहुंचने पर जनाब रूबियो ने जोर दिया कि लेबनान में जंगबंदी पर बातचीत ईरान के साथ जारी मुजाकरात से अलग है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हाल ही में लेबनान के सदर जोसेफ ऑन और अमरीका के नायब सदर जेडी वेन से बात की है और ये कि अमरीकी अहलकार इस वक्त लेबनान में मसरूफ अमल हैं। समुद्र से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तंजीम आईएमओ ने उन 11,000 से ज्यादा जहाजों को निकालने के मंसूबे का ऐलान किया है जो अबनाए हुरमुज में अब भी फंसे हुए हैं। आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल अर्सेनियो डोमिगेज ने एक बयान में कहा है कि उनकी तंजीम ने इन लोगों को निकालने की कार्रवाई में मदद के मकसद से हिफाजत के लिए दरकार जमानतों और महफूज जहाज रानी की तौसीक शुदा शराइत की यकीन दहानी कर ली है। तमिलनाडु की हुकूमत ने वर्ती तमजीगम विजन दस्तावेज को मंजूरी दी है। इस दस्तावेज की अहम पहल मैटरनल अंकल्स गोल्ड रिंग स्कीम है। इस स्कीम के तहत तमिलनाडु में मुस्तकिल तौर पर रिहायश पजीर खानदानों के नौजायदा बच्चों को 1 ग्राम सोने की रिंग पेश की जाएगी, बशर्ते कि बच्चे की पैदाइश सरकारी अस्पताल में हुई हो। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी से महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम के साजगार रहने का इम्कान है। महकमे ने साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अगले 3 दिन के दरमियान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा आलमी कप 2026 में पुर्तगाल ने अमरीका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। 41 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल करके पुर्तगाल को उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से जीत दिलाने में मदद की। रोनाल्डो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग अलग आलमी कप टूर्नामेंट में गोल किए हैं। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। फॉक्सब्रोक के बोस्टन स्टेडियम में इंग्लैंड और घाना के दरमियान खेला गया ग्रुप ए में किसी गोल के बगैर बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरे 15 सेकेंड। आइए सुनते हैं अब शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे तार शहनाई वादन का बलजीत सिंह के द्वारा बजाया गया राग अलिया बिलावल। ये राग रूपक एक ताल व तीन ताल से निबद्ध है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आपने सुना बलजीत सिंह द्वारा तार शहनाई वादन, राग था अलैया बिलावल, संगत कलाकार थे उस्ताद अख्तर हसन तबले पे। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साइंस मैगजीन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

सर मैं आपको बता दें, प्लीज कुछ देर बाद यही 9:35 पर सुबगाही प्रोग्राम में समाप्त फरमाइएगा। हम दिया वो नातिया कलाम पेश करेंगे डॉक्टर अफजल मंगलोरी। 9:45 हम पेश करेंगे प्रोग्राम आज सवेरे। 9:50 पर खबरें निश्चित की जाएंगी और 10:00 सुनिएगा अकबाल इजादी पर मबनी प्रोग्राम शाम फरोजा। 10:05 पर हम पेश करेंगे सो सलाम मसीह और नूहे। 10:30 पर जहां जीम शाह के पेश करदा फीचर शहादत हुसैन और कलाम अनीस का पहला हिस्सा आप सुन सकेंगे। 11:00 से आप समाज सुनाएंगे सो सलाम और कतः रुबाई। 11:30 पर शहादत हुसैन और कलाम अनीस का दूसरा हिस्सा आप सुन सकते हैं। 12:00 खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 से आप सुन सकेंगे सलाम नूहे और मरसिये। नूहों और मरसियों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 1:00 तक।

दौरान हम पेश करेंगे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू है लखनऊ के तारीखी इमामबाड़े। 1:10 पर आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 1:15 पर हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

रसाकम तेरी सना के लिए और सलामी देती है तेरी रबूबियत को नमाज।

और अफजल मंगलौरी का ये मकता इस हमद शरीफ का समात फरमाए कि तेरे हुजूर में अफजल नदामतों के ये

افضل ندامتوں کے یہ

نعت شریف پیش کر رہا ہوں. یا سرور عالم تیری

روزے کے تیمم سر مسجد نبوی رو

0: سامعین، جب سماعت فرما رہے تھے، ہم بھی انعت کلام پیش کر رہے تھے ڈاکٹر افضل منگلوری، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت پروگرام آج سویرے،
1: اور شروع تو آج ہے 24 جون 2026۔ تو آئیے اتہاس میں درج آج ہی کے دن کچھ مہتوپورن گھٹناؤں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات 1717 کی، انگلینڈ میں آج ہی کے دن پہلی سنگٹھت فری میسن گرینڈ لانچ کی استھاپنا ہوئی۔ In 1812, Napoleon Bonaparte's Grand Army, numbering 500,000, begin their invasion of Russia by crossing the Niemen River. In 1853, U.S. President Franklin Pierce signed the Gadsden Purchase, buying 29,670 square miles from Mexico for $10 million, now southern Arizona and southern New Mexico.
2: 1859 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच प्रसिद्ध सोलफेरोनो का युद्ध लड़ा गया।
1: इन 1930, फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ एन एयरप्लेन यूजिंग रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स, अ प्रीकर्सर टू रेडार बाय यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी इंजीनियर्स इन एनाकोस्टिया, वॉशिंगटन डीसी।
2: 1901 में पेरिस में पहली बार पाब्लो पिकासो की कला प्रदर्शनी आयोजित की गई।
1: In 1948, Soviet Union blockades West Berlin by stopping access by road, rail and water.
2: 1982 की अगर बात की जाए तो भारत के तीसरे उपग्रह इनसेट 1A का प्रक्षेपण किया गया।
1: In 1950, the Korean War began after North Korea unleashed an attack southward across the 38th parallel, prompting the UN Security Council minus the Soviet delegate to pass a resolution calling on UN members to assist South Korea.
2: और सर्बियन अगर बात की जाए 1990 की, तो आज के दिन पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने पर सहमति व्यक्त की थी।
1: इन 2010, ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन जूलिया गिलर्ड वाज स्वॉन इन एज ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर।
2: और अब आइए हम बढ़ते अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ और हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की। इनका संबंध ग्वालियर घराने से था। ओंकारनाथ के दादा महाशंकर और उनके पिता गौरीशंकर नाना साहेब पेशवा की सेना के वीर योद्धा थे। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था, उतना ही असरदार उनका संगीत भी था। एक बार महात्मा गांधी उनका गान सुनकर टिप्पणी की थी कि पंडित जी अपनी मातृलेख रचना से जन समूह को इतना प्रभावित कर सकते हैं जितना मैं अपने अनेक भाषणों से भी नहीं कर सकता। उन्होंने एक बार सर जगदीश चंद्र बसु की प्रयोगशाला में पेड़ पौधों पर संगीत के स्वरों के प्रभाव विषय पर अभिनव और सफल प्रयोग किया था, जब सूरदास का पद मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी गाते थे और पूरे श्रोता समुदाय की आंखें आंसू से भीग जाती थी। और श्रोता, आज ही के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का। इन्हें इतिहास आचार्य राजवाड़े के नाम से ख्याति प्राप्त थी। संस्कृत और व्याकरण के भी वे प्रकांड पंडित थे, जिसका प्रमाण उनकी सुप्रसिद्ध कृतियों राजवाड़े धातु कोश और संस्कृत भाषेचा उलगडन आदि में दिखाई देता है। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने भारतीय विवाह संस्था का इतिहास नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना मराठी भाषा में की थी। ग्रंथ इतिहास आचार्य राजवाड़े के व्यापक अध्ययन और चिंतन की एक अनूठी उपलब्धि है। और श्रोताओं, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा दरबान सिंह नेगी ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन चंद भारतीय सैनिकों में से ये एक थे जिन्हें ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस मिला था। दरबान सिंह नेगी करीब 33 साल के थे और गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन में नायक के पद पर तैनात थे। 23-24 नवम्बर 1914 को उनकी रेजिमेंट ने दुश्मन से फेस्टुबर्ट के करीब ब्रिटिश खंडकों पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की और इस युद्ध के दौरान उनकी भूमिका के लिए उनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। और अब बात करते हैं रानी दुर्गावती की। गोंडवाना की शासक थी ये, जो भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में से एक थी। दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राज संभाला, उनकी प्रशस्ति इतिहासकारों ने की। आईना अकबरी में अबुल फजल ने लिखा कि दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रज्ञा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी।
1: टुडे इट्स ऑल्सो फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसीज बर्थडे। Well, he plays as a forward for and captains both Major League Soccer club Inter Miami and Argentina national team. We have been seeing him a lot because the FIFA World Cup 2026, all eyes on FIFA World Cup 2026. And he started off this World Cup with a bang in the opener against Algeria, where he scored a hat-trick.
3: 3 goals. And, well, we regard him as one of the greatest players in history. Messi has set numerous records for individual accolades won throughout his professional footballing career. This include 8 Ballon d'Or and 6 European Golden Shoes and 8 times being named world's best player by FIFA. In 2025, he was named the all-time men's world best player. Messi is the most decorated player in the history of professional football, having won 46 team trophies.
2: और अब बात करते हैं मास्टर तारा सिंह की. प्रसिद्ध कट्टर सिख नेता थे ये, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय सिखों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था. तारा सिंह एक ऐसे सिख नेता होने के साथ साथ पत्रकार और लेखक भी रहे. इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी समर्थन किया. लालपुर के स्कूल में प्रधान अध्यापक का कार्य इन्होंने किया और जिस कारण इनके नाम के साथ मास्टर शब्द हमेशा के लिए जुड़ गया.
0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. सुबह के 9:50 हुए हैं. खबरें नशर होंगी.
4: ये आकाशवाणी है. अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए. ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निपटने के लिए मजबूत तर ताउन के लिए कहा है. वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रास लफान के गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों के हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताजियती कॉल मौसूल हुई. भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की राजधानी की सख्त मजम्मत की है. उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए यह सब कुछ कर रहा है. भारत और अमरीका ने मुजवजा 2 तरफा तजारती मुआहदे को ताजा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की है. और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया. इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ. हमें तफसील से. ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत तरताउन के लिए कहा है. भारत की तरफ से ये आवाज कौमी राजधानी में मुनक़िदा एक आला सतह की मीटिंग में उठाई गई. भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की क्यादत में इस ग्रुप की भारत की सदर नशीनी के तहत मुनक़िदा ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग में रुकन मुल्कों के सलामती के सरकर्दा नुमाइंदे यकजा हुए, जिसका मकसद बैन अल-अक़वामी बिरादरी को दरपेश रिवायती और उभरते हुए खतरात से निपटना था. भारत की वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत में सलामती को दरपेश उभरते हुए उन खतरात पर तवज्जो मरकूज की गई जो कौमी सरहदों से बाहर भी लाहक होते जा रहे हैं. मुंदुबीन ने तवानाई और सबके लिए खुराक की फराहमी से लेकर आबो हवा से मुतालिक अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्द तंजीमों के हाथों उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के बेजा इस्तेमाल तक के मामलात पर तबादला ख्याल किया. वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है और एक दूसरे के साथ करीबी राबता रखने से इत्तेफाक किया है. दोनों रहनुमाओं ने अपने शहरियों की खुशहाली और हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म को भी दोहराया और एक दूसरे की यगानगत और मदद के अपने अहद को ताजा किया. जनाब मोदी ने कल एक टेलीफोन बातचीत के दौरान कतर के अमीर से इतवार को कतर के रास लफान सनती शहर में एक हादसे के दौरान भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की

दो अकीब। नरेंद्र मोदी ने मुतासरा कुंभों के तहत हमदर्दी जाहिर करने पर कतर के रहनुमा का शुक्रिया अदा किया और जख्मियों के जल्द इलाज के लिए फौरी मदद फराहम करने को सराहा। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने अमन के लिए जारी कोशिशों में कतर के तामीरी रोल की तारीफ की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रायजनी की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ये रायजनी अपनी नाकामियों को छिपाने और इंसानी हकूक की पामाली से तवज्जो हटाने की पड़ोसी मुल्क की नाकाम कोशिशें हैं। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इन फर्जी दावों को उतनी ही वाजे तौर पर मुस्तरद करता है जिसके ये हकदार हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दिफा की शराकत दारी पर तर्जुमान ने कहा कि हालिया बरसों में अमारात के साथ भारत के ताल्लुकात में बड़ा इजाफा हुआ है जिसमें दिफा से मुतालिक शराकत दारी का एक अहम रोल है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुस्तहकम मईशतों की तामीर करने, मुस्तकिल तरक्की की रफ्तार में तेजी लाने और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कसीर मुल्की मजबूत तर ताउन के लिए कहा है। कल नई दिल्ली में तरक्की से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए आलमी इज्तिमा से वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाहम मरबूत इस दुनिया में खुशहाली और चैलेंजेज मुश्तरक हैं, लिहाजा तनाजात और गैर यकीनी के नतायज तरक्की पजीर मुल्कों और आलमी जुनून पर गैर मुतनासिब तरीके से मुरतब होते हैं। मुहतरमा सीतारमन ने जोर देकर कहा कि इन चैलेंजों से निपटने के लिए मरबूत आलमी कार्रवाई लाजमी है। भारत की इकतसादी तरक्की का खास तौर पर जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क की तरक्की बुनियादी तौर पर घरेलू मांग पर मबनी है जिसे आमतौर पर मार्केट के तय करदा शरह मुबादला की मदद हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करती हुई बड़ी मईशतों में शामिल है जिसकी घरेलू मजमू पैदावार की शरह तरक्की के बारे में पेशगोई की गई है कि ये औसत मुद्दत में तकरीबन 7% रहेगी जो काफी ज्यादा है। इस समिट में जिसकी सदारत फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने की आगे बढ़ती हुई और उभरती हुई मईशतों के रहनुमा यकजा हुए जिनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, जनूबी कोरिया जैसे G7 ममालिक और बैनुल अक्वामी मालियाती फंड के रहनुमा शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नीति आयोग के नायब चेयरमैन डॉ अशोक कुमार लहरी ने कहा है कि आखिरी सहमाही में भारत की मजमूई तजारत में 5.4% की शरह से तरक्की हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के ताजा एडिशन के इजरा के दौरान ये बात कही। डॉ लहरी ने मजीद कहा कि आखिरी सहमाही में भारत की बरामदात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई और दरामदात में 6.5% का इजाफा हुआ है। भारत के अहम मदनियात से मुतालिक मिशन में खातिर खा तेजी आई है। कानून की वजारत ने उमूमी तौर पर अहम 56 और दिफाई एतबार से अहम धात ब्लॉकों और दरियाफ्त करने के लाइसेंस वाले 11 ब्लॉकों की कामयाब नीलामी की है। वजारत ने 10 अहम और दिफाई एतबार से अहम काम ब्लॉकों को 7वें मरहले की नीलामी के तहत कामयाबी के साथ नीलाम किया है। नीलाम किए गए इस तरह के ब्लॉकों की कुल तादाद 56 हो गई है जबकि अभी तक 88 ब्लॉकों की पेशकश की गई है। नीलामी की यह शरह 63% है। वजारत ने बताया कि ऐसा पहली बार है कि मरकज ने गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में अहम मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी की है। भारत और अमरीका ने एक मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को जदीद और कतई शक्ल देने के लिए आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की है। ये बातचीत अमरीका की महसूल से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की वजह से इस साल के शुरू में तय किए गए एक फ्रेमवर्क में रुकावट की वजह से की जा रही है। तजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका की तजारत के नुमाइंदे जेमिसन गोयल और भारत में अमरीका के सफीर सर्जियो गौर से मुलाकात की। इस
इससे पहले जनाब गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भारत अमेरिका

0: हथियार कत्ल शाह के लिए वे बकार थे।
1: आलम यह है कि इधर दुश्मनों का इज्तिहाम है और इधर दुश्मनों के नरकों में अकेले नबी के नवासे हुसैन हैं।

अभी नौखारी कर रहे थे अली हैदरजादी और उनके हमनवा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है जनाब जीएम शाह का पेश करदा फीचर शहादत इमाम हुसैन और कलाम अनीस। ये दूसरा हिस्सा है फीचर का और आखिरी हिस्सा है। समाज फरमाएं।

सभी आप सुन रहे थे शहादत हुसैन और कलाम अनीस, जनाब जीएम शाह का पेश करदा फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अरब मर्ज़खानी कर रहे हैं जाकिर मिर्जा और उनके हमनवा।

0: और से खतरात से निपटने के लिए मजबूत तआवुन के लिए कहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से तहसीदी कॉल मौसूल हुई। भारत और अमरीका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को ताजा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की है। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है और अब नवा खान कर रहे हैं चांद फैजी और उनके हमनवा।

बंधाई, रोई कभी खेमों की कभी आग बुझाई, बीमार भतीजे को कभी आस बंधाई। अल्किस्सा नमोदार हुई शाम गरीबा, तारीकियों में डूब गया गंज शहीदा, एक अधजल

मैं प्यासे रोती थी, कोई बीबी तो देती थी दिलासे। चौक उठे न मासूम अभी सोए हैं प्यासे। फिर उठी बड़े अज़्म से हैदर की दुलारी, एक चोप जा

अरे किस्मत बड़ी सी शान थी जैनब, सोए हुए बच्चों की निगेबान थी जैनब। अल्लाह हर किस्मत बड़ी।

उठना कहे कह दे उमरे साज से लिल्लाह ही जाके कल दिन के उजाले में हमें लूटना कहे।

गुनाहगार, अंजाम न रुकने का भी अब जान ले जालिम, बेटी हूँ अली की मुझे पहचान ले जालिम।

सब भर में तेरे खेमे का दरबान रहूंगा, ता सुबह इसी दश्त में मेहमान रहूंगा, सब भर में तेरे

सारा मेरा घर लुट गया, तब आए हैं बाबा ढारस के लिए बेटी की, अब आए हैं बाबा। सारा मेरा घर लुट गया, तब आए हैं बाबा। मैं जब हुई

शब्बीर के जब हल्क पे शमशीर चली थी, सच कहती हूँ मैं आप ही को ढूंढ रही थी। शब्बीर के जब हल्क पे

आ जाते तो इस तरह न तकदीर बदलती, यूं प्यासों के हलकों पे शमशीर न चलती। आ जाते तो इस तरह।

हुसैन अंदर और साथी नवा खाली कर रहे थे। अफवाह थोड़ा ही डॉक्टर हसन फैजाबादी से ये अगला नोहा।

0: अभी नवा खानी कर रहे थे अली हैदर जैदी और उनके हमनवा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू है लखनऊ की तारीखी इमाम बाड़े। पेश कर रहे हैं डॉक्टर अतीक अनवर सिद्दीकी।
1: हिंदुस्तान में सकाफती, सियासी और माशरती जिंदगी के हवाले से अगर गौर किया जाए तो 18वीं सदी का जमाना बहुत अहम दिखाई देता है, क्योंकि इस सदी की इब्तदाई से मुगलिया दौर रू बजवाल होने लगा था और पूरे हिंदुस्तान में एक इंतशार की सी कैफियत बरपा थी। इसी सूरत हाल में अगर बंगाल के सियासी हालात पर नजर डाली जाए तो वहां मुर्शिदाबाद में ईरान से आए हुए नवाब मुर्शिद कुली खान ने न सिर्फ एक नया शहर बसाया बल्कि वहां पर ईरानी तहजीब सकाफत और मजहबी अकायद की बुनियाद पर शहर को फरोग भी दिया। इसी तरह दक्कन में निजाम दौरे हुकूमत के बानी भी ईरान से आए थे और हैदराबाद में न सिर्फ ईरानी तहजीब को फरोग दिया बल्कि मजहबी अकायद में भी ईरानियों के तौर तरीकों को अपनाया। गोया बंगाल के मुर्शिदाबाद और दक्कन के हैदराबाद में ईरानी नजाद लोगों ने एक इंफरादी कल्चर और मजहबी शिनाख्त की बागडोर डाली जो इससे पहले इस कदर मुनज्जम तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। कमोबेश इसी 18वीं सदी की दूसरी दहाई में निशापुर से आए हुए एक ईरानी नजाद बहादुर, दिलेर और वफादार जर्नैल ने मुगलिया हुकूमत के बादशाह औरंगजेब के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तानी मुगलिया फौज में मुलाजमत इख्तियार कर ली और अपनी वफादारी व हिम्मत की बुनियाद पर पहले औरंगजेब और बाद में बहादुर शाह अव्वल के भरोसे के वजीरों में से शुमार होने लगे। इन्हीं ईरानियों में सादत अली खां को सूबह अवध का वजीर या नायब मुकर्रर करके अवध में उठती हुई बगावत और अफरातफरी को खत्म करने के लिए भेज दिया गया और इस तरह सादत अली खां ने 1722 में खुद को अवध का नायब के ऐलान के साथ एक नई और खुदमुख्तार हुकूमत का

0: रहे खुशी दसे और हमलावा नौहा खानी कर रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन का एक बजा है। आलमी खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से आलमी खबरें सुनिए। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निपटने के लिए और ज्यादा मजबूत ताऊ की जरूरत पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताजियती कॉल वसूल हुई। भारत और अमरीका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को नया रंग रूप देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बकौल उसके एक तारीखी अमन माहदे के हिस्से के तौर पर ईरान इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करेगा। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया, जबकि इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों में से कोई भी गोल नहीं कर सकी। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत तरतावन के लिए कहा है। भारत की तरफ से यह आवाज कौमी राजधानी में मुनक्कदा एक आला सतह की मीटिंग में उठाई गई। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की क्यादत में इस ग्रुप की भारत की सदर नशीनी के तहत मुनक्कदा ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग में रुकन मुल्कों

0: उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करती हुई बड़ी मईशतों में शामिल है, जिसकी घरेलू मजमूई पैदावार की शरह तरक्की के बारे में पेशगोई की है कि यह औसत मुद्दत में तकरीबन 7% रहेगी, जो काफी ज्यादा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बकौल उसके एक तारीखी अमन वायदे के हिस्से के तौर पर ईरान इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करेगा। इस वायदे के सबब अब नए हुर्मुज में कशीदगी का खात्मा हो गया है। जनाब ट्रंप ने यह भी बात कहते हुए कहा है कि ईरान की फौजी सलाहियत में शदीद कमजोरी आ गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मईशत और दिफा के शोबे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि जब तक मगरबी एशिया खित्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हमले जारी रखेंगे और मिलिटेंट सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे, पायदार अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता। खलीज फारस के खित्ते के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर अबूजहबी पहुंचने पर जनाब रूबियो ने जोर देकर कहा कि लेबनान में जंगबंदी पर बातचीत ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात से अलग है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हाल ही में लेबनान के सदर जोसेफ ओन और अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस से भी बात की और यह कि अमरीकी अहलकार इस वक्त लेबनान में मसरूफ अमल हैं। समुद्र से मुतालिक बैन अल्कामी तंजीम आईएमओ ने उन 11,000 से ज्यादा जहाजों को निकालने के मंसूबे का ऐलान किया है जो अब नए हुर्मुज में अब भी फंसे हुए हैं। आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल और सीनियों ने एक बयान में कहा कि उनकी तंजीम ने इन लोगों को निकालने की कार्रवाई में मदद के मकसद से हिफाजत के लिए दरकार जमानतों और महफूज जहाजरानी की तौसीक शुदा शराइत की यकीन दहानी कर ली है। अमरीका के सेनेट ने कल रात एक बिल को मंजूरी दी है। इसके तहत ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप की फौजी मुहिम पर रोक लगा दी गई है। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर मजीद कोई कार्रवाई की जाती है तो इसके लिए कांग्रेस से पहले से मंजूरी लेनी होगी। यह बिल कल रात मंजूर किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल ने अमरीका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। 41 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल करके पुर्तगाल को उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से जीत दिलाने में मदद की। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निपटने के लिए और ज्यादा मजबूत तालमेल की जरूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने रास लफान गैस प्लांट के धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताजियती कॉल मौसूल हुई। भारत और अमरीका ने मुजवजा दो तरफा तिजारती माहदे को नया रंग रूप देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तिजारती बातचीत शुरू की है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि बकौल उसके एक तारीखी अमन माहदे के हिस्से के तौर पर ईरान इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करेगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये मैं 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। एक नजर इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निपटने के लिए और ज्यादा मजबूत तआवुन की जरूरत पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताजती फोन कॉल मौसूल हुई है। भारत और अमरीका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहिदे को नया रंग रूप देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की है। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया, जबकि इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों में से कोई भी गोल नहीं कर सकी। ये थी इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सब दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं, यहां हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक

समय पर ज्यादातर वो बहुत ही सॉफ्ट किरदार वाली फिल्में करती थी, बहुत ही पॉजिटिव किरदार वाली फिल्में करती थी, लेकिन कर्ज में उन्होंने एक महत्वाकांक्षी और खलनायिका का किरदार निभाकर अपने अभिनय क्षमता को दर्शकों के सामने दर्शा दिया।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज बात हो रही है फिल्म कर्ज की और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। कहानी शुरू होती है एक अमीर और नेक दिल युवक रवि वर्मा से। रवि को कामिनी नाम की एक खूबसूरत महिला से प्यार हो जाता है, कामिनी यानी कि सिनी ग्रेवाल, और दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन कामिनी का प्यार सच्चा नहीं होता और वो रवि की दौलत के लिए उससे शादी करती है। शादी के बाद कामिनी करोड़ों की संपत्ति की मालिक बन जाती है, लेकिन और दुर्घटना में यानी कि पहाड़ों से फेंक दिया जाता है रवि वर्मा को और उसको करार दिया जाता है कि ये दुर्घटना हो गई है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। रवि का पुनर्जन्म मोंटी नाम के गायक के रूप में होता है। बचपन से ही मोंटी को कुछ अजीब सपने आते रहते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसे अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद आने लगी थी। आखिरकार मोंटी कामिनी के अपराधों का पर्दाफाश करता है और अपने पिछले जन्म का बदला पूरा करता है। तो ये जो कहानी थी, ये पुनर्जन्म की कहानी थी। और यही सोचकर जब देखते हैं ना कि हीरो मर जाता है तो दर्शक मायूस हो जाते हैं, लेकिन जब वही हीरो मर के ऋषि कपूर के रूप में, मोंटी के रूप में वापस आता है तो लोग एकदम से खुश हो जाते हैं और कहानी में एक अलग ही रोचक बना जाता है, एक अलग ही तभी मोड़ आ जाता है, और ऐसा खूबसूरत मोड़ जिसे दर्शकों ने खूब सराहा, पसंद किया।

और कार्यक्रम में वक्त है अपने श्रोताओं के मेल्स को शामिल करने का। तो जी सबसे पहला हमारे पास संदेश आया है सुनील पाठक जी का और ये लिखते हैं कि एक ही फिल्म के तहत फिल्म कर्ज की गीतर कहानी सुन रहे हैं। फिल्म अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म थी और इसे की कहानी और गीत सुनने के लिए सुनवाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो भाई आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशात जुड़ रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, कार्यक्रम को सुन रहे हैं। साथ ही ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। इंद्रनगर भवतपुर से राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं। सतीश अनेजा, विमला अनेजा लिखते हैं कर्ज फिल्म बेहद खूबसूरत, अपने जमाने की हिट फिल्म रही है, गीत भी लाजवाब रही है, सभी कलाकारों की भागीदारी भी शानदार थी। इसके अलावा संदेश हमारे पास आया है शशि भल्ला किरण गुप्ता जी का, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर और ये जुड़ रहे हैं मॉडल टाउन करनाल से। संदेश अगला है अजीत भवसार जी का और ये लिखते हैं पुरानी फिल्म ऋषि कपूर, सिमी राजकिरण की फिल्म कर्ज, इस फिल्म में एचएमवी का रिकॉर्ड है बिल्कुल और डांस सॉन्ग फिल्म आ गया, गीत संगीत दोनों ही बहुत ही लाजवाब है। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु भी जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़ रहे हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, रेशस्वी वडिंग खेड़ा, पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जुड़ रहे हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, फजिल का पंजाब खेड़ा से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा और परिवार के सभी लोग जुड़ रहे हैं और ये संदेश हमारे पास आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू जी का और लिखते हैं आज हम फिल्म कर्ज के बारे में विस्तार से जानकारी मिल रही है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाने तो इसके हैं ही शानदार। छत्तीसगढ़ चिड़ियान मुंगेली से जुड़ रहे हैं

0: मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफीम कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, देवशंकर तमूरिया, अजय देव तमूरिया, तुषार देव तमूरिया भी जुड़ रहे हैं बालोद छत्तीसगढ़ से, नगर कोहरा जिला राजनाथ गांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत जुड़ रहे हैं, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जलंधर, पंजाब से। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे श्रोताओं के संदेश लगातार आ रहे हैं, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: Uptown girls, I know the 90s, we love it to the extreme and maximum.

सौ कर्ज की कहानी 1975 की हॉलीवुड फिल्म द रीइंकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड से प्रेरित थी। सुभाष गणेश साहब ने खुद माना कि उस फिल्म का कुछ हिस्सा और भारतीय पुनर्जन्म की अवधारणा मिलाकर कर्ज फिल्म बनाई गई थी। और एक और खास बात यह है इस फिल्म की कि सिमी ग्रेवाल और ऋषि कपूर की ये दूसरी फिल्म थी साथ में। इससे पहले 1970 में मेरा नाम जोकर में दोनों साथ काम कर चुके थे। अब बात करते हैं इस फिल्म की म्यूजिक की, जो है इस फिल्म की जान, जिसे इस फिल्म को अमर बनाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। और इन दोनों महान संगीतकारों ने 1977 से लेकर

1983 तक लगातार चार बार फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जीता था और कर्ज ही इसी विजय सफर की आखिरी कड़ी थी। गीत लिखे थे महान गीतकार आनंद बख्शी जी ने, जिनकी कलम ने हिंदी सिनेमा को अनगिनत अमर गीत दिए और गाने तो आप सुन ही रहे हैं। इस फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक गाना ऐसा जहां आप ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन सा गाना ज्यादा फेमस है। और आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाजों में ये गाने हैं जो आज भी ऐसे हैं कि आपको थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा श्रोताओं, आप हमें मेल करके जरूर बता सकते हैं। अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे।
1: उर्दू खबरें सुनोगे।

देश के नौजवानों की अगुवाई के स्टार्टअप्स ने अपने बूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के तहत हासिल की है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम UNDP इंडिया और सिटी फाउंडेशन वालों अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग और टी हब फाउंडेशन राही लागू की गई है। यह नौजवान की अगुवाई वाली नवीनता उत्साहित करने और निरंतर विकास की चाल प्रगति तेज करने एक मुख्य प्लेटफार्म वजह उभरी है। रिहायश के शहरी मामले बारे मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कोरीडोर लिए केंद्रीय सचिव

0: इस पूरे कैंपस का काम करेगा।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन
0: है। ऐसे स्टेशन जनकपुरी पश्चिम तो आर के आश्रम मार्ग तक मौजूदा मजंता लाइन के विस्तार वजह 5 तक विकसित किया जा रहा है। पंजाब वोटर सूचियों की विशेष ध्यान स्रोत तहत घर घर गणना का पड़ा शुरू हो रहा है। इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने जानकारी दिंदा पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी अमृता मित्रा ने दसाया कि यह अमल 25 जून तो 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। वोटर सूचियों की अंतिम प्रकाशना 1 अक्टूबर 2026 होगी। उन्होंने दसा कि सूबे भर में 24,453 ब्लॉक पद्धर अधिकारी BLOs घर घर जाकर फार्म भरेंगे। श्रीमती मित्रा ने कहा कि हुण तक सूबे भर के 1,84,86.02% वोटों की निशानदेही या मैपिंग हो चुकी है। उन्होंने यह स्पष्ट की जेकर किसी वोटर की मैपिंग नहीं हुई तो उसकी वोट नहीं कटी जाएगी सगों

99 मीटिंग की थी गई है इस प्रोग्राम बीएलओस के कार्यकर्ता जो के गन्ना फार्मर इवेंट इन फार्मर पर ताकि इकट्ठा करने संबंधी जानकारी सांझी की थी गई एक खबर तो सुना पास वन के सेंटर है सादा एक्सेंडर ले एक करोड़ ये और आ रहे हैं जुड़े हैं ईरान की राजधानी तेहरान में पार्टी दूतावास ने सुरक्षा भारत के सिद्धांत के मद्देनजर पार्टी नागरिकों ने एक स्वीकृति हिस्सा जारी की थी गया दूतावास ने कहा कि बदलते कथनक्रम के बावजूद पार्टी नागरिकों ने अगले नोटिस तक सारी गैर जरूरी यात्राओं को बचना चाहिए देश में फिर वाले पार्टी नागरिकों ने ईरान की यात्रा करने वालों ने सलाह दी गई कि बहुत ज्यादा सावधानी के चौकसी बरतें

उसे योग स्रोता राही स्थानक अधिकारियों के नियमों में से रखन और स्थानक अधिकारियों के निर्देशों की पालना करने की भी सलाह दी गई है। यह सलाह दी जाती है कि ताजा जानकारी के आने वाली सलाह की दूत पार्टियों की कार्यक्रम वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नियमित तौर पर निगरानी की जाए। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। यह दिन 24 जून 1967 में पासपोर्ट कानून लागू होने के संबंध में मनाया जाता है। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के दूसरे पड़ाव पर लागू होने से चिप आधारित ई पासपोर्टों की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केन्द्र पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की स्थापना रिकॉर्ड पासपोर्ट जारी करने

संचालन की जो प्रभुत्व सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन से नागरिक सुविधा प्रति वचनबद्ध है। इंडिया पोस्ट राही पासपोर्ट सेवाएं दूर दराडे इलाकों तक भी पहुंच रही है। अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान विरुद्ध फर्जी मुहिम रोकने एक बिल पास किया है। इस अनुसार श्री ट्रंप ने हम ईरान विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने से पहले कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ेगी। यह बिल प्रतिनिधि सभा में पहले ही पास हो चुका है। सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत है, पर चार रिपब्लिकन मेंबरों ने पार्टी लीडर को हट के इस बिल का समर्थन किया। सदन के लगभग सारे डेमोक्रेट मेंबरों ने बिल की हिमायत की थी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न करने बारे सहमत हो गया है। उन्होंने इस हॉर्मुज स्ट्रेट इलाके के तनाव खत्म करने वाले एक ऐतिहासिक शांति समझौते का हिस्सा दसा है। अमरीका के पेनसिल्वेनिया एक उद्योगिक प्लांट में एक समागम में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान में परमाणु हथियार हासिल करने को रोकना उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। हॉकी इंडिया ने पंक्ति 14 जुलाई तक

0: एडवाइजरी जारी की है और यह भी कहा कि वह ईरान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज जारी रखें। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कोंकण और गोवा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में शदीद बारिश के बाद अचानक सैलाब के पेशनजर आसाम में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बरतानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है। और फीफा आर्मी कप में आज मैक्सिको में कोलंबिया ने डीआर कांगो को 1-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। खबरें तफसील से। भारत ने अकवामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाए जाने पर यह कहते हुए सख्त एतराज जाहिर किया कि उसने इस प्लेटफॉर्म को सियासत के लिए इस्तेमाल करना जारी रखा है और पाकिस्तान की इस बात के लिए भी शदीद नुक्ताचीनी की है कि उसने मुआविन सदर की अपनी पोजीशन को गलत तौर पर इस्तेमाल किया है, बजाय इसके कि उसे इस मुकाम पर रहते हुए इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। न्यूयॉर्क में अकवामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तखार अहमद की रायजनी करके जवाब में ये बात कही। पाकिस्तान की जानिब से रायजनी का जवाब देते हुए जनाब हरीश ने मुआविन सदर की हैसियत से उसके तर्ज अमल की सख्त तंकीद की और जम्मू कश्मीर पर भारत के देरीना मौकफ को दोहराया। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत तर इश्तराक के लिए कहा है। मीटिंग से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात और डिजिटल दुनिया में दहशतगर्दी के बदलते तौर तरीकों में इजाले के लिए ब्रिक्स ममालिक के दरमियान जामे बातचीत और इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया। ईरान में भारत के सफारतखाने ने मुल्क में बेहतर सिक्योरिटी हालात के पेश नजर भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है। हालिया मुस्बत वाकयात और मजमूई सूरत हाल में बेहतरी के मद्देनजर सफारतखाने ने हिंदुस्तानी बाशिंदों को मशवरा दिया कि वो सोच समझकर और एहतियात के साथ ईरान का सफर करें। भारतीय बाशिंदों को यह भी सलाह दी गई कि वो अगले नोटिस तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सफारतखाने ने यह भी कहा कि वो जो भारतीय बाशिंदे इस वक्त ईरान में हैं, जो नागुजीर वजूहात की बिना पर ईरान का सफर करना चाहते हैं, वो इंतहाई एहतियात से काम लें, हालात से बाखबर रहें और चौकसी बरतें। उनसे यह भी कहा गया कि वो लगातार सफारतखाने की बाजाब्ता वेबसाइट देखते रहें। सफारतखाने ने मदद के लिए हंगामी नंबर भी जारी किए हैं +9 8 9 1 2 8 1 0 9 1 1 5 +9 8 9 1 2 8 1 0 9 1 0 2 +9 8 9 9 3 1 2 1 7 9 3 5 9। भारतीय बाशिंदे सफारतखाने से ईमेल के जरिए भी cons.tehran.mea.gov.in से राब्ता कायम कर सकते हैं। नीति आयोग के नायब सरबराह डॉ अशोक कुमार लाहिरी ने कहा है कि आखिरी सहमाही में भारत की मजमूई तिजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट जारी करते हुए ये बात बताई। डॉ लाहिरी ने यह भी बताया कि इस अरसे में भारत की बरामद 1.84 खरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि दरामद में 6.5% का इजाफा हुआ। मकानात और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने कौमी राजधानी में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए सेंट्रल सेक्रेटरियट मेट्रो स्टेशन पर तैनाती काम का इस्तेमाल किया।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ही की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन
0: है। नागरिकों से गुफ्तगु करते हुए वजीर मौसूफ ने इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया और कहा कि इस प्रोजेक्ट से सरकारी मुलाजमीन और तमाम पेशावर अफराद की रोजमर्रा की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट आर के आश्रम

0: पार्क से इंद्रप्रस्थ तक होगा। इसमें शिवाजी स्टेडियम भी शामिल होगा और जनकपुरी वेस्ट से इंद्रलोक तक मुसाफिर बिना रुकावट सफर कर सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय सनतों के वजीर एच डी कुमारास्वामी ने आज जोर देकर कहा कि स्टील की सनतों को डिजिटाइज करना मुस्तकबिल में तरक्की के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। नई दिल्ली में स्टील के शोबे की डिजिटलाइजेशन पर चिंतन शिविर से खिताब करते हुए उन्होंने भारत के मतौलिक स्टील शोबे की कारकर्दगी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क ने 2018 के बाद से स्टील की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाले दुनिया के दूसरे मुल्क की अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। उन्होंने मौसूफ ने कहा कि माली बरस 2021-22 से खाम स्टील की पैदावार तकरीबन सालाना 8% बढ़ी है, जबकि तैयारशुदा स्टील की खपत में अंदाजन 13% का इजाफा हुआ है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जा रहा है। 24 जून 1967 को पासपोर्ट से मुतालिक कानून बनाया गया था, उसी मुनासिबत से यह दिन मनाया जाता है। इस मौके पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि दूसरे पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम चिप वाले ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकखाने के पासपोर्ट सेवा केंद्र और रिकॉर्ड तादाद में पासपोर्ट जारी किए जाने से सफर में आसानी पैदा हुई है। आवेदन मौकों तक रसाई में तोसी हुई है और शहरियों को बख्तियार बनाया गया है। भारत की मौसमियात के महकमे ने आज कोंकण और गोवा में तेज से बहुत तेज बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन के दौरान साहली कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। महकमे ने इस महीने की 29 तारीख तक आसाम, मेघालय, अंदरूनी कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने हफ्ते के दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने खलीजी खित्ते का 3 रोजा दौरा शुरू किया। इस दौरे का मकसद अमरीका के ईरान के साथ तय पाने वाले समझौते के बाद अपने अरब साथी मुल्कों को फिर से एतमाद में लेना है। अमरीका, इसराइल और तेहरान के दरमियान 4 महीने से जारी लड़ाई के बाद अमरीका ने ईरान के साथ समझौता किया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बरतानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है। यह दौरा 5 जुलाई से 14 जुलाई तक होगा। नए कोच टिम व्हाइट की निगरानी में टीम स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मुकाबले खेलेगी, जो आइंदा बेलकौमी की तैयारी का एक हिस्सा होगा, जिसमें जूनियर एशिया कप भी शामिल है। टीम की कप्तान खैदम शिलेमा चालू करेंगी, जबकि निधि और एंजली हर्षा रानी मिज 2 गोलकीपर होंगी। नोरोज के इस दौरे का आगाज स्कॉटलैंड की सीनियर खवातीन की टीम के साथ 2 मुकाबलों से होगा। फीफा वर्ल्ड कप में कोलंबिया ने आज मैक्सिको के ग्वाडा लजारा में ग्रुप के मैच में डीआर कांगो को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले अमरीका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाने पर सख्त एहतजाज किया है और इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान मुआविन सदर की अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तहरान में भारतीय सफारतखाने ने भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है और यह भी कहा कि वह ईरान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कोंकण और गोवा में बहुत शदीद बारिश रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में शदीद बारिश के बाद अचानक सैलाब के पेशनजर आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बरतानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. India lodges strong protest against Pakistan over Kashmir issue at UNSC, accuses Islamabad of misusing its position as co-chair. Indian embassy in Tehran issues revised advisory for Indian nationals.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय

0: के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहाध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहाध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217939। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
3: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3,000 किलोग्राम मादक पदार्थ

0: आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, श्याम शुद्रन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए लक्ष्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी

0: जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खेदिम शिलेमा चानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षा रानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हिमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हिमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हिमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सदस्य के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम एक ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार में। आज हम बात करेंगे 90 के दशक की उस अभिनेत्री की जिसने अपनी चुलबुली अदाओं, शानदार डांस और दमदार अभिनय से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। जी हाँ, करिश्मा कपूर, जिन्हें प्यार से लोलो भी कहा जाता है। कार्यक्रम में हम जानेंगे उनके जीवन और उनके फिल्मी सफर की कहानी और सुनेंगे उनके कुछ सदाबहार नगमे।

शुदा 25 जून 1974 को जन्मी मुंबई में जन्मी। करिश्मा कपूर प्रतिष्ठित कपूर परिवार से आती हैं। उनके माता पिता अभिनेता रणधीर कपूर और बबीता कपूर हैं। उन्होंने कम उम्र में फिल्मों में कदम रख दिया था। 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से अपने अभिनय करियर की उन्होंने शुरुआत की। उस दौर में कपूर परिवार की बेटियों का फिल्मों में आना असामान्य माना जाता था, लेकिन करिश्मा ने यह परंपरा बदली और अपने दम पर पहचान बनाई।

हमेशा बहुत सारे ईमेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे श्रोताओं के नाम हम एक बार आपको बता दें जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, शुक्रिया धन्यवाद के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास और आशा देवी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक चंसौलिया भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।

सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरखुलूस आदाब कबूल करें, एक ही कलाकार कार्यक्रम को हम सुन रहे हैं। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरिट कैंप से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ जा रही हूं, जो कि आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का, जो कि हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। संदीप मक्कड़ भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। नमस्कार जी, पहला जी प्यार के पहले पंकज शर्मा जी, मुझे आपकी ये समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हाँ आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से आपने मैसेज भेजा ये हमें दिखाई दे रहा है। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, अमर, रमेश कुमार खत्री, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, हरिपाल कौर, किरण ठाकुर, शशि बाला, किरण गुप्ता जी, राम राम जी के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव फरान से जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। 1991 में पहली फिल्म प्रेम कैदी से इन्होंने करियर की शुरुआत की, ये जानकारी हमें दे रहे हैं राजेश सिंह जी। इन्हें घर में प्यार से बेबू कहते हैं, इन्हें घर में प्यार से लोलो कहते हैं। मैं आपको बता दूं, इनके जोड़े गोविंदा के साथ इन्होंने कई सुपरहिट पिक्चर दी, राजा बाबू, दूल्हे राजा, साजन चले ससुराल। आज इनके जन्मदिन पर इन्हें बहुत बहुत बधाई। ये लिखा है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सिंह जी ने। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक ही कलाकार में आज करिश्मा कपूर जी के बारे में बहुत उम्दा बातें बता रही हो, लवली रोमांटिक गीत में मैं तो रस्ते पे जा रहा था। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में शामिल भी हो चुके हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही चलते हैं और सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा करिश्मा कपूर जी पर फिल्माया गया।

1996 में आई राजा हिंदुस्तान उनके करियर का बड़ा मोड़ रहा। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1997 में आई दिल तो पागल है ने करिश्मा कपूर को एक नई पहचान दी।

में उनके अभिनय और डांस को खूब सराहा गया। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार दोनों मिले। हाल ही में उन्होंने बताया कि उस दौर में कई अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ डांस करना था, लेकिन करिश्मा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और यादगार अभिनय किया। आइए सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं आपके, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैसेज हमारे पास आया है, कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडीलोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर भी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रोग्राम गीत पसंद आ रहे हैं, ये लिख रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओं, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। मैडम जी नमस्कार, के साथ चने सरगोथ कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन जफर, सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ चल रहे हैं, जो कि कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडीलो हारा बालोद छत्तीसगढ़ से ही आया है। देवशंकर तामुरिया जी ही हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया नमस्कार के साथ हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, ये लिख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे भी हमारे कार्यक्रम को लगातार सुन रहे हैं। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने करिश्मा कपूर के बारे में बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से सुनाए, नगमे भी सुनवाए, बेहतरीन प्रस्तुति रही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिख रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार। इसके साथ ही चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि आया है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, करिश्मा कपूर का सफर संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानी है। 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल करिश्मा ने हिन्दी सिनेमा को अनेक यादगार फिल्में और गीत दिए हैं। इसी के साथ मुझे यानी

श्रमिंग अदर्स, ये आकाशवाणी है जिनके तीन बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस के नशात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामीन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 के लोकर्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से कुछ ही देर के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और दिन में 3:15 पर आप सुनेंगे सो सलाम और मर्सिया। सपहर 3:30 मोहतरमा अमीर निगार रिजवी का तहरीर करदा फीचर आप सुनेंगे हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी। 4:00 आप सुनेंगे नौहा सो सलाम और मर्सिया। 4:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5:00 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन ये थे एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

रिपोर्ट्स पेश कर रही थी शाकिया खलीली और हमनवा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर हमारी नशरात का सिलसिला जारी है। और ये सुनिए मोहतरमा अमीर निगार रिज़वी का तहरीर करदा फीचर, हकीकत आबादी है मकाम शब्बीरी।

0: भूख और प्यास का माहौल, हर तरफ बढ़ती हुई सख्तियां, और फिर 9 मुहर्रम को करीब असर इब्न साद ने धावा बोल दिया, फौज इमाम के खेमों तक पहुंच गई।
1: हजरत ने एक रात की मोहलत मांगी, मुश्किल रात भर की मोहलत मिली।
2: वो रात मौला और उनके असहाब ने इबादत में गुजारी।
3: उस दिल शिकस्ता हुसैन की तश्न लबी को अपनी वीरान आंखों में छिपाए, ये रात कितनी सोगवार कितनी सरगरा है। नहरे फरात की मौजों का शोर भी इस रात के उस सन्नाटे को न तोड़ सका था, जिस सन्नाटे में तमाम कायनात की रूह गुम थी। वो रात जिसकी खामोशी में शहादत हुसैन का पैगाम पिन्हा था, वो रात जिसकी हलचल से दिल आफाक में तलातुम था, वो रात जिसके ताक में शम वफा का नूर झिलमिलाता था, वो रात जिसकी कोक से जन्म हुए उजाले में मदीने का चिराग गुल हुआ था। उस रात के आखिरी पहर की हौलनाक तारीखी में यजीदी लश्कर उन मंसूबों को आखिरी शक्ल दे रहा था, जिनका मकसद फातह खैबर के जिगरबन फातिमा जहरा की नूर ऐन, गरीबुल वतन तश्नलब हुसैन का लहू करबला की तपती रेत पर बेदरेक बहा देना था। एक तरफ बेपनाह कुव्वत और ताकत के नशे में चूर यजीदी फौज, और दूसरी जानिब उस दश्त करबला में बेकसो तश्नलब हुसैन, जिनके मुख्तसर से कुनबे और साथियों के खेमे में आंधी के जोर से मिशल तक न ठहरती थी। खेमा भी अंधेरे में काला नजर आता था। आंधी से उड़ती हुई खाक की तहें हरम शेरे खुदा के चेहरे पर थीं, और बच्चे प्यास से इस तरह कुमला गए थे जैसे गर्म हवाओं ने फूलों का अरक खींच लिया हो। खुदावंदा, वो कैसी सुबह है जो इस रात के सीने में हुमक रही है, और ये किन निगाहों से खेमा इस्मत की बीवियों ने आसमान की तरफ देखा है।

0: से आशूर फर्श हुई। रोजे आशूर का आगाज हुआ। हुसैन की हक परस्ती और हुसैन से बैत लेने की यजीद की जिद अको बातिल की जंग में तब्दील हो गई।
1: हजरत ने मैदान जंग में आकर इत्माम हुज्जत में खुतबा पढ़ा, अपने बुजुर्गों का जिक्र किया, खुद को पहचानवाया, मगर कुछ असर न हुआ, लड़ाई छिड़ गई।
2: पहला तीर उमर इसहाक ने हजरत की तरफ रिहा किया। कई हजार तीर लश्कर इमाम पर आए, उधर हजारों की फौज और इधर सिर्फ 72 जानसार।
3: रोज़े आशूर जवानों ने बनी हाशिम और हुसैन के अंसार और असहाब ने 3 दिन की भूख और प्यास में वो जंग लड़ी के मलाइका सदा प्रेम थे।
0: हुसैन के लश्कर का एक एक सिपाही सैकड़ों पर भारी था। अजब नहीं कि लश्कर यजीद का सफाया हो जाता कि मुशियत खुदावंदी पूरी हुई।
1: दुश्मन की फौज से मर्दाना वार लड़ते हुए सबसे पहले इमाम के अंसार और असहाब ने मौला पर अपनी जाने निछावर की, फिर रफ्ता रफ्ता अजीज व अकारिब काम आए।
4: एक एक से पहले था खरीदा और रजल का सर कट रहे थे, गर्म तबादा और रजल का यू जाते थे मैदान शहादत में वो जर्रार, जिस तरह के बिछड़ी हुई बुलबुल सुए गुलजार। खुद रोकते थे फर्क पर जब आती थी तलवार, और बाराने करम जानते थे तीरों की बौछार। बरछी जो लगी नखले शहादत में फलाया, और जा गई जिस वक्त पया में अजलाया। जख्मों को अताए समाधि जानते थे वो, आजार को लुत्फ हदी जानते थे वो, जीते को मुकद्दर की बदी जानते थे वो, मरने को हयाते आबादी जानते थे वो। सूखे हुए होंठों पे मोहम्मद की सना थी, दो रोज की प्यास उनके लिए आबे बका थी।
2: और एक वक्त वो आया जब बहन जैनब के बेटे और मोहम्मद न रहे, भाई हसन के बेटे कासिम न रहे, हम शक्ल नबी अली अकबर न रहे, और यहां तक के
3: अब्बास कत्ल हो गए, महशर बपा हुआ, बेकस हुसैन हो गए, भाई जुदा हुआ।
0: अब खत्म है लड़ाई, अलमदार मर गया, दौड़े हुसैन कहते हुए हाय क्या हुआ।
1: पहुंचे जो गिरते पड़ते तो देखा ये हाल ज़ार, शाने कलम है शेर है जख्मी पड़ा हुआ।
2: मुश्के सकीना खून से है तर पड़ी हुई, पटका भी है अलम का लहू में भरा हुआ।
3: सुबह से जोहर तक इमाम आली मकाम 70 लाशें उठा चुके थे,
0: और अब रुखसत के लिए खेमे में तशरीफ लाते हैं। उन्हें देखते ही अहले बैत में कोहराम मच गया।
1: बदुशवार ये तमाम सबको सब्र की तलकीन करके मैदान में आए, फिर एक खुतबा पढ़ा, और जब कुछ जवाब न मिला तो खुदा से मुनाजात की और फौज आदा की तरफ रुख किया। बड़े बड़े नाम नहाद सूरमाओं को चश्म जदन में कत्ल किया।
2: अश्किया में कोहराम मच गया। दुश्मन का हर सिपाही इमाम के अंदाजे जंग और उनके दबदबे से मरूब था।
3: उधर है दुश्मनान दीन, इधर फकत इमाम है, अजीब इसकी शान है, गजब की आन बान है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है।
0: दिलावरी में मर्द है बड़ा ही शेर मर्द है, कि जिसके दब दबे से या अदू का रंग जर्द है। हबीब मुस्तफा है ये, मुजाहिद खुदा है ये, जबी तो इसके सामने ये फौज गर्द गर्द है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है।

مجبور ہو کے رونے لگے شاہ خوش خصال بولے یہ چکے

0: समझ कर ईमान को फिर से घेर लिया। उन्होंने इमाम आली मुकाम पर हर तरफ से तीर बरसाना शुरू कर दिए।
1: अबुल हनूफ का पहला तीर हजरत की पेशानी पर लगा, खून से चेहरा पर हो गया। हजरत दामन से खून पहुंच रहे थे कि दूसरा तीर सीना अकदस पर पड़ा।
2: हजरत घोड़े से लड़खड़ाने लगे, आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। सुआले इब्ने दहब ने पुश से तलवार लगाई जो सरे अकदस पर पड़ी। बेकसो मजलूम इमाम घोड़े से लड़खड़ाकर जमीन पर आ गए।
0: उमरे साथ के हुक्म से पै दर पै अश्किया इमाम के कत्ल के लिए आगे बढ़े, मगर किसी की जुरत न हुई। आखिर को शिमर लनी आया और उसने अपने खंजर से इमाम का सर तन से जुदा कर दिया।
3: इज्जत हयात में हो तो मेरे जमीन मुरीद लुत्फ करम है, ये सब के सब सिरात साबित कदम है।
0: शहादत हुसैन से लश्कर यजीदी ने नाम निहात फतेह वो कामरानी के वक्ती शादियाने जरूर बजे, लेकिन यजीदियत वक्ती फतेह के बाद नाकाम हो गई और फिर हमेशा नाकाम रही।
1: यजीदियत नाकाम रही इबलीस के नक्श कदम पर चल के, यजीदियत नाकाम रही नमरूदियत के पैरहन में, यजीदियत नाकाम रही फिरौनियत का रूप बदल कर,
2: यजीदियत नाकाम रही बातिल से मोहब्बत करके हक का गला घोट के, यजीदियत नाकाम रही मजलूमों का खून बहा के, यजीदियत नाकाम रही जुल्म व इस्तबदाद की इंतहा करके।
1: लेकिन दूसरी जानिब हुसैनियत कामयाब हुई कुफर के तीरों का सामना करके, नमाजों में ढल के रकातों और सुजूद में बदल के,
2: हुसैनियत कामयाब हुई बातिल से जंग करके, हुसैनियत कामयाब हुई हक पर चल के जबर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करके,
0: हुसैनियत कामयाब हुई मजलूमों के काज की अलम बरदार बनकर, हुसैनियत कामयाब हुई नो के नीजा पे चढ़कर, हुसैनियत कामयाब हुई शशमाहे की कुर्बानी देकर, हुसैनियत कामयाब हुई अब्बास के शाने कटवा कर,
1: हुसैनियत कामयाब हुई हथकड़ियों और बेड़ियों की झनकार से शऊर को बेदार करके,
2: और हुसैनियत कामयाब हुई अपना घर जला के जिसके शोलों से हक़ व सदाकत की रोशनी फैली। ये रोशनी इतनी फैली कि बुकए नूर बन गई, बुकए नूर जो बसीरत वालों के लिए मीनारे इंसानियत है।

علی اکبر کی ابرو دیکھتا تھا جو یہ کہتا تھا, علی اکبر کی ابرو

कमर कस कर अली अकबर ने जब सर पर रखा शमला, कमर कस कर अली अकबर ने

अने सब तो हिला लो बद्र को यक्षा समझते हैं अने अब तो हिला

तर्ज़े सितम ऐ ज़मीं, किसने सिखाया तुझे? कहती थी बिनते अली, रहम न आया तुझे। तर्ज़े सितम ऐ ज़मीं, किसने सिखाया तुझे?

हैं प्यासे। रोती थी कोई बीबी तो देती थी दिलासे, चौकुट्ठे न मासूम भी सोए हैं प्यासे। फिर उठी बड़े अज़्म से हैदर की दुलारी, एक चोप

0: ہے باقی.
1: خورشید اکبر اور ہم نوا پیش کر رہے ہیں سو سلام اور مرثیہ.

0: प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाए जाने पर सख्त एहतजाज किया है और इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान मुआवन सदर की अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान में भारतीय सफारतखाने ने भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है और यह भी कहा है कि वो ईरान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज जारी रखें। और वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने दुनिया के इस चैलेंज भरे माहौल में भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान गहरे ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस।
2: एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी का ए अमृतसर केंद्र। नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस हिंदी ए पंजाबी सेवाए। शाम के 5 बजे ने हुन सारी दूजी सभा के प्रोग्राम शुरू हुंदे ने। सामीन, सब तो पहला तुसी समात फरमाओगे सराइकी प्रोग्राम झोक माही दी।

भारतीय ऑल इंडिया रेडियो दे विदेश प्रसारण सेवा दा सिराई की प्रोग्राम है। मैं संजय पाहुजा आप सबको सलाम नमस्ते इस्तकबाल करेंगा। आज असा हाजिर है आप सब दे नाल सिराई की सूफी संगीत दे नाल। असा दे नाल हैं आज रूपेश चोपड़ा जी, वो असा को कुछ सूफी संगीत अपनी मिठड़ी आवाज विच सुने सन। सब तो पहले वो पेश करेंगे पेन सुल्तान शाह हुसैन साहब जी का एक गावन, माहे नी मैं केनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नहीं।

0: साईं झूलेलाल दी इबादत विच गाया वंजन वाला है गीत दमादम मस्त कलंदर। मतलब ही कोई सिराई की बिरादरी विच इंजा बंदा हो सी जे ना सुन रखा हो सी। बहुत वड्डे वड्डे गायका ने एक गीत गाया है। अज असाकू रूपेश चोपड़ा जी एक गीत गा के सुने सिंह दमादम मस्त कलंदर।
1: लाल मेरी पते रखियो बला झूले लाल सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी पते रखियो बला झूले लाल लाल मेरी पते रखियो बला झूले लाल सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर यदा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल।

ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਲਣ ਆਈਆਂ ਬਲਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲਣ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਲਣ ਆਈਆਂ ਬਲਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲ।

जा सकी शाबाश कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर द पहला नंबर, दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर होला।

तेरी नौबत माजे झरन झरन तेरी नौबत माजे झरन झरन तेरी नौबत माजे झरन झरन तेरी नौबत बाजे झरन झरन तेरी नौबत बाजे नाल बजे गणी याले बला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दास की शाबाज कलंदर दमादम मस्त।

कमली दा ढोला मैं कमली दा ढोला हाय रात दम्मे लुटे जान दिए हाय रात दम्मे लुटे जान दिए नींदर ते कईयां हाय नींदर ते कईयां नींदर ते कईयां हाय नींदर ते कईयां हाय कईयां चौका लाईयां हाय रात दम्मे लुटे जान दिए हाय रात दम्मे लुटे जान दिए मैं कमली दा ढोला हाय।

ਚੌਕ ਵਸੇਵੇ ਉਹ ਨਾ ਦਿਹਾਏ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹੀ ਮਾਹੀ ਮਿਲਾਏ ਜਿੰਨਾ

दिए, हाय रात जम्मी लुटी जान दिए, आख गयो वे साई मुड़ ना आयो, आख गयो वे साई मुड़ ना आयो, आख गयो वे साई मुड़ ना आयो, आख गयो वे साई, आख गयो वे साई मुड़ ना आयो।

दा डोला मैं कमली दा डोला हाय रात धम्मे लुटे जान दिए हाय रात धम्मे लुटे जान दिए नींदर ते कईयां हाय नींदर ते कईयां हाय नींद

वाह जी वाह, बहुत बढ़िया रुपेश चोपड़ा जी। मिंदर ते कईयां हाय कईयां झोंका लाइयां। हुण असा तुहाडे कन्नो एक भी फरमाइश करे सू, एक मिया सूफी गीत, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है। इश्क ते भा बरोबर इश्क दाता तखेरा, भा सड़ेंदी कख काने नू, इश्क सड़ेंदा जेड़ा, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है।

हुलहुला के इश्क जुआया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, हुलहुला के इश्क जुआया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, था नाच नचाई है यार डाडी, इसका आतिश लाई है यार डाडी, इसका आतिश लाई है, ओ सानू लग गई बे अख त्यारी, सानू लग गई बे अख त्यारी।

यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। इश्क अवेड़ा बहन न देंदा, इश्क अवेड़ा बहन न देंदा, थी गदागर मस्त करेंदा, थी गदागर मस्त करेंदा, इश्क अवेड़ा बहन न देंदा, थी गदा

0: यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। ओ सानू लग गई बे अख त्यारी, सानू लग गई बे अख त्यारी, सीने दे विच ना समाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। ओ सानू लग गई बे अख त्यारी, सानू लग गई बे अख त्यारी, सीने दे विच ना समाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है।
1: सामीन हुनी तुसी सुन रहे सी सराइकी प्रोग्राम झोक माहिती। उम्मीद करदे आं कि अज दा ए प्रोग्राम तुहानू बहुत पसंद आया होएगा। जानकारी ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम देस पंजाब बिल्कुल तैयार है जी तुहाडे वास्ते। लो जी थोड़ी देर तक पेश करदे आं प्रोग्राम देस पंजाब।

दोस्तो अज दे देश पंजाब प्रोग्राम दे विच तुसी सुनोगे अज दी गल। अज दी गल दे विच असी भूतपूर्व राष्ट्रपति वी वी गिरी होरां बारे गलबात करांगे। पंजाबी फिल्म म्यूजिक जीआईएन प्रोग्राम दे विच पंजाबी कहानीकार वरियाम सिंह संधू होरां नाल कीती गलबात सुनाई जाएगी। नमस्कार दोस्तो, मैं हां तुहाडी दोस्त मोनिका मेहता। दोस्तो, अक्सर जदों असी देश दी गल करते हां तां इक गल बार बार दिमाग दे विच आंदी है कि देश की सेवा करना किड्डा औखा है। देश की सेवा दे विच जिन्ने भी पैर पाया है उन्हें मुसीबतां तां लख चलियां ने, पर हां उन्हें देश दे प्रति अपना ऋण जरूर चुकाया है। सेवा देश दी जिंदड़ी ए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। वीवी गिरी, मजदूरां दी आवाज तो लैके राष्ट्रपति भवन तक दा सफर। वीवी गिरी होरां दा जन्म एक मिसाल है कि मेहनत, ईमानदारी ते लोक सेवा दी भावना इंसान नूं किन्नी ऊंचाई तक लै जांदी है। असी अपने देश दी सेवा करना चाहुंदे आं ते देश दी सेवा करन लग्यां सानू वड्डे वड्डे अहुदियां दी लोड़ नहीं पैंदी। किसे राजघराने नाल संबंध होवे ए वी जरूरी नहीं, योग्यता होनी चाहीदी है, ईमानदारी होनी चाहीदी है ते देश नाल प्यार होना चाहीदा है। कहिंदे ने कि जदों वी वी गिरी होरां ने अपनी उचेरी पढ़ाई लई आयरलैंड जाण दा फैसला लिता ते उहदे पिछे मंशा इही सी कि अपने देश लई कुछ कर गुजरीए। जदों ओ कानून दी पढ़ाई पढ़न लई आयरलैंड गए, उत्थे लोग बरतानवी शासन खिलाफ संघर्ष कर रहे सन। इस माहौल दे विच उना दे मन दे विच आजादी दी लहर जागृत हुई। भारत आके ओ आजादी दे अंदोलन दे विच जुड़ गए। महात्मा गांधी ने उस वेले दे बच्चा नूं किन्ना प्रेरित किया कि अपने देश दे लई जो हक्कां दी आवाज उठ रही है उन्दे विच मोढे नाल मोढा मिला के देश नूं आजाद करवाया जाए। गांधी जी दे असहयोग आंदोलन ने वीवी गिरी होरां नूं बड़ा प्रभावित किया। इन्ना प्रभावित किया कि उन्हां नूं लग्या कि इस वेले देश दे हर एक नौजवान, हर एक भारती दी इक्को आशा, आस, उम्मीद होनी चाहीदी है कि अपने देश नूं आजाद करवाया जा सके। ओ गांधी जी दे असहयोग आंदोलन तो इन्ने प्रभावित होए कि उन्हां ने वकालत दा चंगा भला अपना करियर छड़ के देश सेवा नूं अपने आप नूं समर्पित कर दिता। दोस्तो, अजिहियां कहानियां, अजिहियां मिसालां सानूं इह वी सबक दिंदियां ने कि गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने, पर अमली जामा पहनाना, कुछ करके विखाणा, इह वाकई बड़ा औखा है। दोस्तो, उस वेले इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने जोरां ते सी, उद्योग घर घर दे विच पनप रहा सी। उद्योग की गल की जाए तो मजदूरा की लोड़ पैंदी है उद्योग वास्ते, ते उना मजदूरा दे उत्ते ही तशद्दतां चलदियां पईयां सी। घट पैसे दिते जा रहे सी, जिथे ओह रहिंदे सी ओह थां इंसाना दे रहण जोगी है ही नहीं सी। उस समय फैक्ट्रियां ते उद्योगां दे विच मजदूरा की हालत बड़ी माड़ी सी। वीवी गिरी होरां ने मजदूरा की वधिया तनखा, कम दे तयशुदा घंटे ते उना दी सुरक्षा दी मंग इन लोकां दे सामने ल्यांदी, वड्डे वड्डे हाकमां दे सामने ल्यांदी। इसे करके उना नूं मजदूरां दा मसीहा भी किया जांदा है। आजादी दी लड़ाई दौरान वीवी गिरी होरां नूं कई बार गिरफ्तार किया गया, पर जेल दीआं मुश्किलां भी उना दे हौसले तोड़ ना सकियां। ओह होर भी मजबूत इरादे नाल वापस आए ते उन्हां ने देश नूं आजाद कराने दे संघर्ष च अपना पूरा पूरा योगदान पाया। वीवी गिरी होरां ने भारत विच ट्रेड यूनियन नूं मजबूत किया ताकि ए जत्थेबंदियां मजदूरां दे हक्कां लई आवाज उची कर सकन, आवाज बुलंद कर सकन, मजदूरां नूं उन्हां दा बनदा हक मिल सके। ते दोस्तो, ए गल दुनिया दे विच हर जगह लागू हुंदी है कि जिस देश दे किसान, मजदूर, कामे ए खुशहाल होण, ढिड भर के रोटी खांदे होण, सिर ते इना दे पक्की छत होवे ते आण वाले कल कल दी कोई चिंता ना होवे, बच्चे उना दे पढ़ लिख जाण, इस तो वद होर कुछ नहीं चाहिदा हुंदा। ते जे किसे देश दे कामियां नूं, मजदूरां नूं ए सारियां सहूलतां उपलब्ध ने, मतलब ओ देश अगां वध रहा है। आजादी तो बाद
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਵੀਗਿਰੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਵੀਵੀਗਿਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ। ਵੀਵੀਗਿਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਛਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਹੈ 1967 ਦੀ। 1967 ਵਿਚ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। 1969 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਵੀਗਿਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵੀਵੀਗਿਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।

दोस्तों हुनी तुसी दिलराज कौर दी आवाज दे विच एक गीत सुन रहे सी। लो जी कहते ने कि जिथे मोहब्बत हुंदी है उथे परमात्मा आप वास करता है। बुल्ले शाह चल उथे चलिए जिथे होण अकल दे अन्ने, बुल्ले शाह चल उथे चलिए जिथे होण अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। ते लो जी फिर मोहब्बत ना परिया ए गीत, मेरी चुन्नी ता चमके गोटा नी मैं किवें लुकावां खुशियां नू, गुरदास मान ते आशा भोसले दी आवाज दे विच आओ सुनदे आं।

0: ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਤੱਵਯ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਤੱਵਯ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਰਤੱਵਯ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੱਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 11 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤੱਵਯ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੱਵਯ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਝੰਡੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਅਬ ਆਪ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारा तला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा है कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नेमी ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
3: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
2: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सैमिसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार झुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा

रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोवना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।
1: तो श्रोताओं, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपका कार्यक्रम लेके कृषि जगत
0: जी। और देखिए, कृषि जगत में हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे भी बातचीत करेंगे और अपने भाइयों से भी बातचीत करवाएंगे कृषि समाचार के माध्यम से, जो संध्या गुप्ता लेकर आई हैं, और उनका मनोरंजन भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम कृषि समाचार दर्शन संध्या गुप्ता से सुनवाते हैं, जो उन्होंने किसान भाइयों से कुछ बातें करी हैं,
2: आइए सुनते हैं।
3: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। दिनांक 20 जून 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पश्चिम बंगाल की हुगली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए अपने अनुभव हमारे साथ साझा करे हैं।
4: मैं संजय शर्मा, पुस्तैनी किसान, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से। मेरे यहाँ सब्जियों की खेती होती है। दिनांक 20 जून 2026 को पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई, जो कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और सहायता के रूप में ही कहूंगा कि ऐसे टाइम पे जब बुआई का टाइम आता है, खाद बीज उर्वरक की जरूरत होती है, उस टाइम पे एक किस्त आती तो बहुत काम आती है। इसमें महिला किसान भी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा उनको लाभ मिला है और ये विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी पहलों में से एक बन गई है, जो डायरेक्ट किसान के खाते में, सरकार का पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है, कोई बिचौलिया नहीं है। और मैं अगर किसान उसकी बात करूं कि इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं जिनका हम लाभ ले रहे हैं। हम वेजिटेबल्स की खेती, सब्जियों की खेती करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी जो भी योजनाएं होती है उनका मैक्सिमम लाभ हमको मिलता है। कभी कभी तो ये प्रोग्राम चल रहा होता है और एकदम से जो पता नहीं चलता है, मैसेज आ जाता है। कभी कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से एक दो दिन लग जाता है, बाकी वैसे उसी टाइम पर आ जाती है, उसी दिन जिस दिन प्रोग्राम चल रहा होता है। प्रधानमंत्री जी सीधा किसानों से संवाद करते हैं, सामने भी और वर्चुअल माध्यम से भी, मतलब बड़ा आनंद आता है। जो उनका वितरण करने का तरीका है वो भी अपने आप में सराहनीय है। सबको जानकारी दी जाती है उसके लाभों के बारे में, सब चीज के बारे में, और वो बहुत आनंद आता है। किसान बहुत खुश होते हैं क्योंकि मेरा तो इसका प्रोग्राम जो होता है उत्सव हो गया और सहायता है। ये किसानों के लिए सहायता भी है, उत्सव भी है, सम्मान भी है और प्रोत्साहन भी है। अब तो सर ये इतनी दिक्कत आती नहीं है, थोड़ी बहुत अगर आती है तो उसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उनका डायरेक्ट संवाद करा के डायरेक्ट उनसे जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट की जाती है। शुरू में आती थी, अब इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। सरकार का एक बहुत बड़ा विजन है पीएम किसान सम्मान निधि, किसान का जो सम्मान सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये पूरे देश के किसानों को एक साथ जोड़ करके उनके खातों में सम्मान निधि के रूप में किस्त देना अपने आप में सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विश्व में इस तरह की पहल को हमने कभी सुना नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन रहा है, जो किसानों से वो सीधा संवाद करते हैं, सीधा जुड़ते हैं, और एफपीओ भी वो बना रहे हैं, किसान सम्मान निधि होगी, उन्होंने एफपीओ बनवाए किसानों से, बहुत सारी चीजें जो हम, मैं अगर अपने व्यक्तिगत तौर पर लूं तो सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। और ऐसी बात नहीं है

0: का डिपार्टमेंट है वो भी सर किसानों को खूब जानकारी दे रहे हैं और किसान उसका लाभ भी ले रहे हैं और भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं यशपाल सिंह राठौर, ग्राम कंदा, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का एक किसान हूँ। 40-50 साल से खेती कर रहे हैं, उस बचपन से ही कर रहे हैं समझो। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, अलीराजपुर जिला तो है, इसमें मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये खेती बरसात की करते हैं। आम का बगीचा भी मैंने लगाया है पश्चिम बंगाल से, जो 20 जून को डाला है हमारे किसानों के लिए। तो ये तो हम तो बिल्कुल ताक में रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कब हमें ऐसी सहायता दे। और अभी तो ये बरसात का मौसम है, तो ऐसे में अगर हमारे को ऐसी सहायता मिल जाए तो इतना मैं खुश हूँ। ये इलाका जो अलीराजपुर है बिल्कुल आदिवासी इलाका, गरीब जैसा है, तो यहाँ पे अगर 2000 की सहायता मिल गई तो किसान तो इतने खुश है कि पूछो मत, उनको हाथ बीच का सहायता मिल जाती है। जी, ये 23वीं किस्त प्रधानमंत्री जी ने हमारे को है, बहुत ईजी काम है, जिसका भी किसान के उसमें नाम है। तो हमारे वहाँ पटवारी और मोदी जी ने इतना अच्छा सहयोग किया था कि किसानों को दौड़ना ही नहीं पड़े। पटवारी साहब खुद आए थे, सब डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और कुल ऑनलाइन ले लिया उनने, खाता नंबर और सब। पटवारी साहब ग्राम पंचायत में आए थे सब अधिकारी, और उन लोगों ने सब डॉक्यूमेंट्स लेके और चालू हो गए हमारी, बहुत अच्छे से चालू है अभी। पंचायत दूसरी जगह को पता नहीं, लेकिन हमारे वहाँ तो पंचायत में खुद अधिकारी, बैंक का अधिकारी आए थे, पटवारी साहब आए थे, ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच सब बैठे थे और उसकी ड्यूटी लगी थी। हर किसान को आधार कार्ड है, बैंक का खाता नहीं तो उसका जीरो से खाता भी खुला उन लोगों ने, और बहुत अच्छे से आराम से, कोई तकलीफ नहीं है, हमको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ा और आज हम से चालू होगी। जी, ये 24 फरवरी 2019 से जो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना लागू की है उससे पूरे साल भर में आती है, तो ये तो बहुत अच्छी योजना है और हमारे को तो खूब लाभ होता है। 10 रूपये भी किसी को देना नहीं, 2000 रूपये है तो डायरेक्ट पूरे मतलब 10 पैसे भी किसी के पास नहीं जाएंगे, पूरे 2000 रूपये हमारे पास ही आएंगे। और इसमें हमारे वहाँ तो महिलाओं का भी, गरीब महिला है आदिवासी, और ये उनका भी किसानों में नाम है, किसान के साथ नाम रहता है, तो वो उनके उस खाते में भी पैसे आ रहे हैं 2000 रूपये। तो महिला तो इतना ज्यादा खुश है कि मोदी जी का नाम लेके बहुत उनको तारीफ कर रहे हैं। और मतलब ये समझो कि अगर किसी के पास कुछ नहीं और 2000 की सहायता मिल जाती है तो बहुत बड़ी राहत रहती है ये। मतलब कि मक्का का बीज लेना है, छोटी छोटी बात, 100-200 रूपये भी किसानों के पास नहीं रहते हैं, तो हम लोग जब मार्केट में जाना है तो लेके अगर मिल जाएंगे तो अभी बरसात की बिल्कुल तैयारी, खाद लेना, बीज लेना। तो छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए अभी चालू हो रहे हैं स्कूल में, तो सिर्फ देना कितने उनको 50 रूपये 100 रूपये चाहिए, लेकिन हमारे वहाँ आदिवासी बेल्ट है तो किसी के पास इतने भी पैसे नहीं मिलते। इतने में अगर ये 2000 की राशि मिल गई तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर किसी के पास हम लेंगे बीज उधार में लेंगे क्या, या फिर व्यापारी से लेंगे, तो जब पकेगा तो डबल देना पड़ता, लेकिन वो तो अब रहेगा ही नहीं। हम बिल्कुल नगद लेके आएंगे, मार्केट में जाएंगे, पैसा देंगे और नगद में लाएंगे, तो बहुत अच्छा है, अच्छी खुशी की बात है। किसानों की आय में तो अच्छा है, जैसे हमारे वहाँ पे गेहूं जो पकता है तो सरकार उसको खरीदती भी है, जैसे गेहूं है, और बोनस मिलता है हमको जो मार्केट में बिकता है उससे 2 पैसे ज्यादा में बिकता है हर चीज, तो बहुत अच्छा है। सब भी अपने बच्चों को, सबको पढ़ाई भी अच्छी करवा रहे हैं और आने वाला टाइम भविष्य और अच्छा रहेगा। हम शाम को मेरे मोबाइल में तो उन्हें 20 तारीख को कल डाला है, लेकिन हमारे मैसेज मोबाइल में आज आया मैसेज, और हम साथ में कम से कम 3-4 साथ में मित्र थे, तो वो बोले मेरे मेरे मैसेज आ गया। हम कल से देखते रहते वो मैसेज में क्या, थोड़ा सा 1-2 कलाक ऐसा लेट हो सकता आगे पीछे, तो फिर मैंने बोला कि देखो मेरे आगे 2000, तो फिर थोड़ी देर बाद एक मेरा मित्र बोले कि मेरे भी आ गए यार, तो वो फिर तीसरा बोलता सॉरी मेरे भी आ गया मैसेज, तो एक खुशी की एक लहर अलग ही रहती है इसके लिए। हम तो सोचते हैं कि ऐसे मोदी जी हमारे लिए खूब किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं, तो हमें तो मतलब आपसे अभी क्या बताएं, अगर आप रूबरू में देखो तो हमारी आंखों में आंसू है खुशी के। ऐसा देश का प्रधानमंत्री हमने पहला देखा जो गरीबों को, हमारे किसानों जैसे को याद करते हैं, जो गरीबों का, किसानों का हितेशी हो, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम तो मोदी जी को। ये प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि की जो राशि मोदी जी ने जो की है उसके लिए मोदी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना दिल से धन्यवाद कि गरीब जो है वो तो आपको इतनी दुआ दे रहे हैं कि हम तो भगवान ही मानते हमारे लिए।
2: जी नमस्कार, मेरा नाम अंकित व्यास है, तहसील गैरतगंज के ग्राम हेनौतिया खालसा में मेरी जमीन है। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी वाला जो पानी है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और उनके द्वारा जो आर्थिक रूप से ये मदद की जा रही है बहुत लाभकारी।

0: नरक में या साल के अंतराल में जो भी हमें राशि व्यय होती है उसका हम कहीं ना कहीं बहुमूल्य उपयोग करते हैं, क्योंकि अभी इस समय बोनी से संबंधित कृषि में कई लाभकारी कार्य किए जाते हैं, पैसे की आवश्यकता होती है और इस समय पे जो राशि आई है इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये राशि कहीं ना कहीं जाके बहुत अच्छे आयाम के लिए उपयोग हो रही है। इस समय पे अभी पैसा व्यय करने के बाद में जो छोटे किसान के पास नहीं बचता उस समय ये पैसा आया है, इसके लिए तो आभार ही व्यक्त कर सकते हैं उनका। ये सब YouTube पर प्रसारण देख रहे थे तब बहुत अच्छा संदेश है प्रधानमंत्री जी का कि गरीब लोगों के लिए जो आर्थिक छोटे छोटे किसान है उनके लिए मदद कर रहे हैं, बाकी अभी तक किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, उनके लिए ये बहुत सुंदर और अच्छा निर्णय लेके उन्होंने जो एक प्रावधान प्रारंभ किया है इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे क्षेत्र के किसान भी बहुत प्रसन्नतापूर्वक बात करते हैं, जब अच्छा भी लगता है जब हम उन लोगों के बीच बैठकर इन तरीके की चर्चा निकलती है। किसान अभी उन्नत खेती करते करते तो आ रहे हैं लेकिन जैविक खेती और इनके प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रोत्साहन देते हैं इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है और उनको कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसे सोयाबीन का बीज अभी इस समय बहुत महंगा चल रहा है लेकिन ये है कि ये जो किसान की क्षमता नहीं थी लेने की लेकिन ये धनराशि आ गई है तो मक्का का धान का और सोयाबीन का बीज लेने में जो असमर्थ थे तो इस जगह पे आकर यदि ये पैसा मिलता है तो कहीं ना कहीं जाके अपन अपनी बुआई के लिए बीज इकट्ठा कर पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 फरवरी 2019 से जो धनराशि मिल रही है उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है। इससे पहले देखते थे कि बीज लेने के लिए साहूकारों से बीज लेते थे जो कि मनमानी तरीके से बीज देते थे और कहीं गांव पे एक प्रथा चलती है कि बीज को डबल करके देना, पैसे का अभाव था तो मैं भी और अन्य किसान भी उस बीज को लेते थे जिसे डबल करके देना पड़ता था, मगर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है किसानों को ये धनराशि देते हैं जिससे आज हमें ये बीज खरीदने में बहुत उन्नत बीज खरीद लेते हैं और हम अपने तरीके से बीज लेते हैं। पहले क्या होता था कि हम बीज लेते थे उधारी का बीज ऐसा होता था कि हमें उनकी तरफ से उनकी जैसा जो बीज ने दे दिया हमें वो देना पड़ता था, वो कहीं ना कहीं 30-40% उगता था। आज हम अपनी मन से पसंद करके जो बीज लेते हैं हाईब्रिड का या किसी भी तरीके का तो वो उन्नत बीज उत्पादन में हमारी क्षमता बढ़ा रहा है तो उससे हमारी पैदावार बढ़ रही है, इससे आर्थिक स्थिति दूसरी ओर से भी सुधर रही है, पैदावार अच्छी हो रही है तो साथ साथ हमारे क्षेत्र के निवासियों को भी इसका लाभ मिल रहा है क्योंकि ये कम राशि में अच्छी गेहूं चावल मक्का धान सब हमें अर्थ रूप से यही प्राप्त हो रहे हैं कि डायरेक्ट किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से आ रहे हैं। ये बहुत सुंदर और सराहनीय निर्णय है क्योंकि इसमें बीज का राशि का हस्तांतरण होना या किसी को लेना देना ये सब बातें खत्म हो गई। प्रचार प्रसार पहले से चल रहा था तो हम उस साहित्य की राशि आएगी। धन्यवाद।
1: ग्राम दोहरा जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। 20 जून 2026 को किसान सम्मान निधि हम किसानों को मिला है। किसान सम्मान निधि पैसे किस्त देख मिला बहुत प्रसन्नित हुआ। इससे इस समय अब धान की बुआई की तैयारी चल रही है, इसे किसानों को हम लोगों का खाद का बीज का खेत को समृद्ध करने में आसानी होता है जिससे हम लोग खाद का प्रयोग कर लेते हैं, पैसे का तेल का भी यूज हो जाता है, इससे किसानों को सहूलियत मिलती रहती है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत से किसानों मिलते हैं तुरंत एक दूसरे से बात करते हैं, लोग हमारे खाते में आ गए हमारे खाते में किसान समझ आ गया, जो अपने किसान अपने अवसरताओं के पूछ लोग करना शुरू कर देते हैं, दो महीना बाद हो जाता है तो हम लोग प्रतीक्षा करना शुरू कर देते हैं जो न तारीख को किसान सम्मान निधि हम लोग मिलेगी, जो डेट जारी हो जाता है तो हम लोग उसी दिन का इंतजार करते हैं किसी खाते में पैसा आया किसी खाते में नहीं हो आया तो क्यों नहीं आया, वो किसान उदास रहता है जब खाते में पैसे नहीं आते हैं, जब पैसे आ जाते हैं तो उसका चेहरा खिल जाता है, इसका केवाईसी नहीं होता उनका रुक जाता है, जिनका केवाईसी अपडेट किसान किए रहते हैं उनका समय से मिलता रहता है, वो अपने किसी भी हम जाकर संपर्क करते हैं तो वहाँ सुधार हो जाता है, फिर पुनः आना शुरू हो जाता है। एक बोरा तो हम लोग डाई तो यूरिया ले लेंगे, 1500 में डाई मिल जाएगी, वो यूरिया मिल जाएगी से हमारा कम से कम एक आधा तो हो जाता है, एक एकड़ खेत के लिए हो जाता है हमारा, चाहे जोताई दे सकते हैं चाहे तेल के दे सकते हैं चाहे बुआई के लिए बीज ला सकते हैं, ये चीज की आपूर्ति हो जाती है एक एकड़ के लिए हमारे, छोटे भी किसान सीमांत भी सबको खुशी मिलती है पैसे मिल करके, सुधार तो आ ही रहा है धीरे धीरे से, जब किसान हमारे जागृत हो रहे हैं सरकार के प्रति नए नए नवाचार के प्रति नई नई कृषि की विधियों के प्रति अपनी जागृति दिखा रहे हैं और किसान आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, जो भी कृषि है चाहे सिंचाई हुआ सब पर सरकार दे रही है अनुदान, जो किसान जागृत है अपना आवेदन कर रहे हैं वो लाभ दे रहे हैं और हमेशा टीवी पर अखबार पर हमेशा न्यूज में पेपर में आता रहता है किसानों को अनुदान के लिए किसानों को सुविधाएं के लिए सरकार सब कुछ दे रही है, बोरिंग दे रही है इंजन दे रही है। रही है, ट्रैक्टर दे रही है। प्रधानमंत्री जी बोले थे।

0: सरकार किसानों को हमेशा ऐसा सुविधाएं मिलती रहे, आर्थिक सहयोग और यांत्रिक सहयोग जो भी कृषि की सुविधाएं हैं मिलती रहे, इसलिए सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
1: मेरा नाम सुदीप चौरसिया, ग्राम कड़िया का एक प्रगतिशील कृषक हूँ। 20 जून को जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हमारे खाते में सीधा राशि का हस्तांतरण किया गया है और इससे हमें बहुत प्रसन्नता है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है और इससे हम जो है अपने कई कार्य काम कर सकते हैं। जैविक खेती की जिस तरफ वो ध्यान दे रहे हैं और उसके बाद उर्वरकों का जिस प्रकार से नियंत्रण कर रहे हैं और उत्पादन वृद्धि में जिस प्रकार से सहायता प्रदान कर रहे हैं, किस प्रकार से खेतों में कम पेस्टिसाइड का उपयोग करके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि जो है सभी के खातों में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खाते में हस्तांतरित हो रही है और इससे किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्रतीक्षा तो कर रहे थे और यहाँ पर बढ़िया माहौल है और लोग इससे काफी प्रसन्न हुए हैं। इससे छोटे किसानों को काफी लाभ प्राप्त हो रहा है और जो सम्मान निधि से जो भी उनको रुपया मिलता है, पैसा मिलता है, उससे वो अपने कृषि में नए नए उपकरण वगैरह या किसी प्रकार से हकाई जुताई में इसका वहन करके और इससे फायदा ले रहे हैं और अपना जो भी कृषि से जो भी आय हो रही है उससे इसमें बचत हो जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जिससे किसानों को काफी लाभ पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त तो उद्यानिकी में कई सारी योजनाएं हैं, कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि किसानों को बराबर इनसे लाभ ले सकते हैं और हम भी इसका लाभ ले रहे हैं। सरकार काफी सारी योजनाएं चला रही है, इसी तरीके से और नई नई योजनाएं चला करके किसानों को लाभ पहुंचा सकती है। भारत सरकार किसानों के लिए एक नए नए आयाम विकसित कर रही है और काफी अग्रणी विकास कर रही है। 20 जून को जो हमारे खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जो डली हुई है उसके लिए हम भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं।
2: कृषि समाचार दर्शन का यह अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शर्मिंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: अभी हमारे भाई सुन रहे थे संध्या गुप्ता के साथ कुछ किसान भाइयों की बातचीत। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कल 23वीं किस्त हमारे किसान भाइयों के खाते में डाली थी और इसी वजह से हमारे किसान भाई बहुत खुश थे कि वो बीज ले सकते हैं, अपनी फसल के लिए कुछ और कर सकते हैं या उनके हाथ में पैसा आ गया है तो वो अपनी फसल के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इन सब बातों को जब उन्होंने 23 जून पे सीधी किस्त उनके खातों में डाली और उन्होंने मैसेज देखा तो उनके चेहरों पर अलग ही खुशी
4: रौनक थी। बिल्कुल, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं दिनेश गिरी की आवाज में एक उपदेश। जी,
5: जिस घर में नित्य कल है वहाँ असुरों का

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे दिनेश गिरी की आवाज में ये उपदेश, और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं हमारा कार्यक्रम गीत और गजल, जिसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल। कलाकार हैं जगजीत सिंह और साथ में चित्रा।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे गीत गजल के कार्यक्रम के अंतर्गत तीन चंद खूबसूरत सी गजलें। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुने प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 657 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से सभी जिला न्यायालयों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालत शुरू की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य की शुरुआत की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इस निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।
2: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि यह स्टेशन चरण 5A के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, जो वर्तमान मेजेंटा लाइन का जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम मार्ग का विस्तार है। 9.9 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 9 भूमिगत स्टेशन शामिल हैं। इनमें शिवाजी स्टेडियम, युगे युगीन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाईकोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल है। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि केंद्रीय सचिवालय स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां नई मेजेंटा लाइन का स्टेशन मौजूदा येलो और वॉयलेट लाइन से निर्बाध रूप से जुड़ जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों, यात्रियों और लुटियंस दिल्ली क्षेत्र में आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक चलेगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए लक्ष्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं, उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है, ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
2: यह परियोजना राजधानी दिल्ली के मुख्य हिस्से से आवागमन को सुदृढ़ करने और यात्री सुविधा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या।
1: दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 657 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में आज ये निर्णय लिया गया।
4: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राजधानी की सड़कों को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख मार्गों की गुणवत्ता में सुधार होगा और सड़क अवसंरचना को आधुनिक मानकों के अनुरूप सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के पूर्वी रखरखाव क्षेत्र में लगभग 58 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर 147 करोड़ रुपए, उत्तरी रखरखाव क्षेत्र में 104 किलोमीटर लंबी सड़क पर 247 करोड़ रुपए और दक्षिणी रखरखाव क्षेत्र में लगभग 107 किलोमीटर लंबी सड़कों पर 263 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत व्यय की जाएगी। समय की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नेहा गोस्वामी।
1: बैठक में उत्तरी दिल्ली के धीरपुर में डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक नए कैंपस के निर्माण को मंजूरी दी गई है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि लगभग 1668 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये कैंपस राजधानी में गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया कैंपस विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करेगा और राष्ट्रीय राजधानी में उच्च शिक्षा के अवसरों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

0: समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने आज नई दिल्ली के पुलिस मुख्यालय में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि उन्होंने पुलिस बल को अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसमें महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निरंतर कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने, सर्वोत्तम पुलिस पद्धतियों को अपनाने और AI तथा ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से सामुदायिक पुलिसिंग और खुफिया जानकारी जुटाने में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन को सक्रिय रूप से शामिल करने का भी आग्रह किया। संधू ने मानवीय, दृश्यमान और सक्रिय नागरिक केंद्रित पुलिसिंग की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि जनता का विश्वास और भरोसा मजबूत हो। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करके यातायात चुनौतियों का समाधान करने का भी निर्देश दिया और सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री संधू ने कर्मियों के कल्याण, पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और पुलिस आवासीय परिसरों को अवशिष्ट मुक्त कॉलोनियों में बदलने के महत्व पर भी चर्चा की। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक के लिए शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में VIP कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस पुस्तक में सरकार और आम नागरिकों के बीच दूरी पर विचार किया गया है। इसमें जन केंद्रित शासन के माध्यम से यह दूरी कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
2: भारत इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस ए सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी।
0: दक्षिणी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया है कि दिल्ली के किसानों की वैकल्पिक आवासीय प्लाटों के आवंटन की मांग को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि यह फैसला उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। श्री बिधूड़ी ने बताया कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी तथा जिनके वैकल्पिक आवासीय भूखंडों के आवेदन भूमि और भवन विभाग की सिफारिश के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजे जा चुके हैं, उन्हें 3 महीने के भीतर वैकल्पिक आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान नागरिकों की समस्याओं और सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री सूद ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान ही सुशासन की पहचान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को जवाबदेह, संवेदनशील और प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार में मंत्री और बवाना के विधायक रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज जनसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों से मुलाकात की। श्री सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में जनहित और विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। इसमें क्षेत्र की प्रगति और जनकल्याण को नई गति देने का संकल्प दोहराया गया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देना और विकास को नई दिशा देना ही दिल्ली सरकार का प्रयास है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज लाजपत नगर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री वाही ने रोगियों से बातचीत कर अस्पताल की सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में OPD, डे केयर, फिजियोथेरेपी, एक्सरे कक्ष और दवाओं की उपलब्धता की जांच की। श्री वाही ने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने असमर्थ रोगियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। नई दिल्ली में रफी मार्ग पर उद्योग भवन के पास झुग्गी में आज तड़के आग लग गई। दमकल विभाग को सवेरे 3 बजे सूचना मिली और इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। मॉनसून के आगमन को देखते हुए राजधानी में तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज कीर्ति नगर और मोती नगर में मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: लोक निर्माण विभाग ने बताया कि राजधानी में नालों की डीसॉल्टिंग का लगभग 90% कार्य पूरा कर लिया गया है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बताया कि इस वर्ष डीसॉल्टिंग अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। विभाग ने कहा कि इस वर्ष लगभग 30 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने का कार्य पूरा किया गया है। मीडिया से बातचीत में श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि आज दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य अभियंता और फील्ड टीमें मानसून से पहले सड़कों और नालों का निरीक्षण कर रही हैं। श्री सिंह ने बताया बताया है कि अगले 10 से 15 दिनों में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा।
4: 70 विधानसभा अगले 10-15 दिन में हम देख लें कि सारे काम हो रहे या नहीं हो रहे। जो काम ठीक नहीं हो रहे उनके कॉन्ट्रेक्टर की पेमेंट रुकवा रहे हैं, जो इंजीनियर ठीक काम नहीं करेंगे उनके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। अगर दिल्ली की जनता को इस बारिश में कोई जल भराव ना दिखाई दे इसके लिए हमारा प्रयास।
3: श्री सिंह ने कहा कि रखरखाव अनुबंध होने के बावजूद कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन केवल जमीनी स्तर पर जाकर ही किया जा सकता है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: दिल्ली सरकार ने राजधानी में डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
5: बैठक में अधिकारियों ने राजधानी में इन बीमारियों की वर्तमान स्थिति, निगरानी व्यवस्था, अस्पतालों की तैयारियों, मच्छर नियंत्रण गतिविधियों तथा जन जागरूकता अभियानों की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि डेंगू के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही श्री सिंह ने नागरिकों से अपील की कि घरों और आसपास कहीं भी मच्छरों के पनपने की स्थिति न बनने दें। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की शीघ्र पहचान और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तथा त्वरित प्रक्रिया तंत्र की व्यवस्था को विकसित किया है। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली में 35 सेंटिनल सर्विलांस अस्पताल सक्रिय रूप से इन मामलों की निरंतर निगरानी कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं अमित कुमार त्यागी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री शाह मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। इसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये पत्र मांग और आपूर्ति में कमी तथा पुनर्वास पर केंद्रित समन्वित उपायों के माध्यम से मादक पदार्थों के खतरे से निपटने में सहायता प्रदान करेगा। दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से राजधानी के सभी जिला न्यायालय परिसरों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालतें शुरू की जाएंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: यातायात पुलिस ने बताया कि ये न्यायालय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक माह के दूसरे शनिवार और प्रत्येक रविवार को आयोजित किए जाएंगे। इसमें सभी व्यक्तिगत और व्यावसायिक वाहनों के समझौता योग्य यातायात नोटिस या चालान शामिल किए जाएंगे, जिसमें चालान या नोटिस की सीमा प्रति वाहन अधिकतम 20 निर्धारित की गई है। ये सुविधा दिल्ली के पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, 30,000, साकेत, रोहिणी और द्वारका न्यायालयों में उपलब्ध कराई जाएगी। यातायात पुलिस ने कहा कि चालान डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट कल से लाइव की जाएगी। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। इन स्थानों से अवैध पार्किंग हटाने के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही, वहीं शाम में वर्षा से दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 657 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग मंत्री परमेश साहिब सिंह

मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से सभी जिला न्यायालयों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालत शुरू की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह की घड़ी वक्त बता रही है 8:00 पूरे हुए 15 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं आप सभी के चंद बहुत ही खूबसूरत से फिल्मी गीत। आइए आगाज करते हैं इस खूबसूरत सी पेशकश के साथ।

अभी आप सुन रहे थे गीत मालिका के अंतर्गत फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज पर। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार हिंदी अंग्रेजी और फिर उर्दू में। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
2: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
3: Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution, in a sense, a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
4: 26 डेलीगेट्स फ्रॉम इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
5: बचाव काम जीतकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की खेत से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज इसी के अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्यो जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
6: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरि और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर ₹94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीव के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री जो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। समय 9:45 मिनट हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

0: अरुणाचल प्रदेश में आज शदीद बारिश और अचानक सैलाब के सबब किए पायनार जिले के तहत याजाली सर्किल में नीपको कॉलोनी में भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद लापता हैं। हुकाम ने अभी किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की है, अलबत्ता अभी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, तफसीलात का इंतजार है। नीपको के प्रोजेक्ट के सरबराह ने मुतल किया कि 17 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालात संगीन है। संगीन तौर पर जख्मियों को इलाज के लिए बजरिया एम्बुलेंस जीरो ले जाया गया। वजीर आला पेमा खांडू ने मुतासरीन और उनके कुंभों से ताजियत का इजहार किया, जो अपने अजीजों के बारे में पता चलने का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत मुतासर कुंभों के लिए काम कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने शुमाल मशरकी खित्ते झारखंड महाराष्ट्र उड़ीसा जैली हिमालयाई मगरबी तेलंगाना साहिली कर्नाटक कोंकण और गोवा के मुख्तलिफ मकामात पर कल शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। महकमे ने महाराष्ट्र मराठवाड़ा मगरबी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि अगले 2 दिनों के लिए बिहार में भी इस तरह के मौसम की सूरत हाल की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मगरबी राजस्थान में कल धूल भरी आंधी की पेशगोई की गई है। महकमे के मुताबिक शुमाल मशरकी बहरे अरब गुजरात और मध्य प्रदेश नीज महाराष्ट्र के बकिया हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और झारखंड में जून मगरबी मानसून मजीद पेशकदमी कर गया है। इस दौरान आज शाम कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की सी औसत बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फीफा वर्ल्ड कप में आज कनाडा के वैनकोर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। एक और मैच में वाशिंगटन के स्टल स्टेडियम में बोस्निया और हर्जेगोविना का मुकाबला कतर से होगा। इससे पहले मैक्सिको के शहर गुआदाला जारा में कोलंबिया ने जमहूरिया कांगो को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 0 के मुकाबले 5 गोल से हराया। 41 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इस तरह वो वर्ल्ड कप के 6 मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड और घाना का मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर खत्म हुआ, जबकि क्रोशिया ने पनामा को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे सफीर जेमेसन ग्रेर के साथ तजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हम मनसब चो ह्योन के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने अबनाए हुरमुज के जरिए एक आरजी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात वैनकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात।

0: जमीन आप सुन रहे थे सलाम और मसीहा, ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की अश्रिया। पुलिस अमीन अब पेश है अदबी नशिस्त, उर्दू मरसिया निगारी में अनिसु दवीर मौजू के हवाले से।
1: आज की इस नशिस्त में हमारे साथ डॉक्टर तनवीर अहमद अलीवी साहब

0: लश्कर
1: फर्दे
0: सियाहे शब को किया खारिज दफ्तर, मंसूब हुआ आमिले रोज अपनी जगह पर, चेहरा न रहा दफ्तर अंजुम में किसी का, परवाना चरागों को मिला बरतरफी का। तो अब ये जो अल्फाज थे और जो रियायतें थीं और जो इशारे थे, ये पूरे उस फौजी निजाम से ताल्लुक रखते हैं। दफ्तर होना, मंसूब होना, उसका माजूल होना, दफ्तर सिया का खारिज होना उसका, ये तमाम चीजें उस फौजी निजाम की इस्तेलाहात से वो अक्स करते हैं और सुबह की मंजरकशी करते हैं। लेकिन अनीस इसके मुकाबले में ज्यादा सादा पैराए बयान अख्तियार करते हैं। क्या ख्याल है आपका?
2: मैं अर्ज करता हूँ अलवी साहब इस मामले में कि क्या वजह है हम जो इस वक्त अपने जमाने में जो शोहरत पाते हैं और जो इज्जत पाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो जेन्युइन हो। ये जरूरी नहीं कि वो जेन्युइन हो, क्योंकि हमारी शख्सियत मौजूद है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने जमाने में गैर मामूली गैर मकबूलियत का शिकार होना पड़ता है। या गाना चंगेजी इसके वो है, उनकी शख्सियत बीच में आ गई थी, लेकिन उसके बाद जमाना जो है फिर उनके फन को जब देखता है तो वो करता है उनका सही असेसमेंट। ये क्यों है कि अब हम जब चार बड़े शायरों का, उर्दू के अजीम शायरों का की गिनती करते हैं, तो हमें सिर्फ मीर, गालिब, अनीस और इकबाल मिलते हैं। हालांकि दबीर जो है वो भी उस जमाने के हैं और अच्छे बड़े शायर हैं। लेकिन ये क्यों है कि वजह यह है कि अनीस के यहां यकीनन कुछ फनी खूबियां ऐसी थी जो वो सरवाइव करके जिंदा रह गए इतने अरसे तक।
3: मैं अर्ज करूं
0: जी,
3: अदब में कदर शनासी जो होती है उसमें एक रोल तनकीद का भी होता है।
2: जी
3: हाँ। और मेरा ख्याल है और मुझे यकीन है कि अगर शिबली का मुआज़ने अनीस और दबीर न होता तो दबीर का मुस्तकबिल इतना खराब न हुआ
2: होता
3: जितना के किया गया। दबीर को भी आप पढ़ें तो न जाने कितने दबीर के मिसरे हैं जो लोग अनीस के नाम से पढ़ देते हैं, इसलिए कि अनीस की एक शोहरत है। अच्छा, ये इसमें शक नहीं कि दबीर का एक अपना रंग है, लेकिन ये कहना कि उनके यहां सादगी बिल्कुल नहीं है ये सही नहीं है, और ये कहना कि अनीस के यहां सिर्फ सादगी है ये भी सही नहीं है। एक कतरे को जो दूं बस तो कुलजुम कर दूं, बहरे मवाज फसाहत में तलातुम कर दूं। अब ये जबान अगर अनीस की है तो दबीर की भी इसी किस्म की मुख्तलिफ जगहों पर होती है। तो ये मैं समझता हूं कि ये कह देना और एक तरह का एक स्वीपिंग रिमार्क इस तरह का कर देना ये सही नहीं है। ये जरूर है कि अनीस को हमने इतना पढ़ा है, उनकी चीजें इतनी अवेलेबल रही हैं, उनको सोजखानी में और मरसिए की महफिलों में इतना गाया गया है, इतना हम तक पहुंचा है कि अवेलेबिलिटी की भी बात होती है। और अगर मैं समझता हूं कि दबीर का कलाम पहुंचे तो वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही साए में आ जाए, लेकिन इसमें शक नहीं कि नजीर अनीस आर्टिस्ट की हैसियत से अपना जो मुनफरिद मकाम रखते हैं वो कम लोग रखते हैं।
0: नहीं, ये यहां पर कोई मवाजना मकसूद नहीं था, क्योंकि हम दोनों के महासिन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। लिहाजा ये कि दबीर जब किसी मौजू को नज्म करते हैं तो उनके यहां दकीक मजामीन की तलाश रहती है, हमेशा वो इस बात की कोशिश करते हैं। मैंने सुबह के मंजरकशी के सिलसिले में बंद पेश किया, बहुत मशहूर बंद है उनका, पैदा शुआ मेहर की मखराज जब हुई, पिन्हा दराजिये पर ताऊ से शब हुई और कता जुल्फे लैलिये जोहरा लकब हुई, मजनू सिफत कवाए सहर चाक जब हुई, फिक्रे रफू थी चरखे हुनरमंद के लिए, दिन चार टुकड़े हो गया पैबंद के लिए। तो ये एहतमाम जाहिर है कि मतलब किसी शख्स को जिसे अपने फन पर महारत नहीं है ऐसा एक मिसरा नहीं नज्म कर सकता है, और दूसरा कोई नहीं है दबीर के अलावा जो इस तरह का कोई एक बंद लिख सका हो, जो दबीर को कुदरत है। लेकिन जब अनीस कहते हैं कि चलना वो बादे सुबह के झोंकों का दम बदम, मुर्गाने बाग की वो खुशलहानियां बहम, वो आबो ताबे नहर वो मौजों का पेचो खम, सर्दी हवा में पर न ज्यादा बहुत न कम, खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ।
2: को तो बुनियाद बनाया था।
0: मालूम होता है कि वाकई वो मंजर जो है वो निगाहों के सामने फिर जाता है।
2: बात यह है शारिफ साहब के शिबली इनके बारे में, अनीस के बारे में मेरा ख्याल ये है कि वो दबीर से ज्यादा बड़े माहिर नफ्सियात हैं, इंसान की नफ्सियात से वो ज्यादा वाकिफ है, اور زیادہ فصیح ہے، ان کے ہاں فصاحت زیادہ ہے،

0: पर तवज्जो ज्यादा रहती है, लेकिन जहां तक एक का बहुत आगे बढ़ना और दूसरे का उसके मुकाबले में शेडो हो जाना है, इसका ताल्लुक हमारे नकादों के रवैये से है कि उन्होंने दबीर को पूरी तरह पढ़ा भी नहीं और राय दे दी।
1: एक बात और फरमाइए, मरसिया मजमे आम में पढ़ने के लिए होता था
2: जी,
1: अनीस और दबीर जो थे वो मरसिया पढ़ते थे, मजलिस में पढ़ते थे जिसमें बहुत बड़ी तादाद लोगों की होती थी।
0: हाँ, हाँ।
1: तो और अब ये मरसिया पढ़ा जा रहा है और एक ही मौजू पे दो लोग या कई लोग लिख रहे हैं, तो आपके अंदर अगर कोई नुदरत नहीं है, अगर आप कोई नई बात नहीं पैदा कर सकते हैं, वो जबान की हो, उसलूब की हो, नफ्सियात के की हो, अगर ये नहीं है तो फिर क्यों आप लिख रहे हैं और किसके सामने पढ़ रहे हैं आप? देखिए, ये मुतासर करना लोगों का जो है वो मामूली काम नहीं है। इसी सूरत में हो सकता है कि जब आप एक मुनफरद अंदाज में कोई बात कहें, अगर दबीर बिल्कुल वैसे ही कहते कि जैसे अनीस कर रहे हैं, तो दबीर के वजूद की ही जरूरत क्या थी?
2: सही है, सही है।
0: तो मालूम हुआ कि उनकी इनफरादियत एक दूसरे उसलूब में है,
3: मालूम
2: उस पर जाहिर है उन्होंने
3: अलवी साहब, मालूम तो ये भी हुआ कि ये तो नहीं कहा कि शहे मुशखेन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन। अब इसकी फसाहत, इसकी रवानी और इसकी नफ्सियात आप देखिए कि इससे रोंगटे खड़े कर देते एक आदमी कितने सीधे सीधे लफ्जों में। नहीं, ये है अनीस
2: सही है। नहीं देखिए, मरसिये में जिस तरह से, यानी मरसिया तो एक बहुत अजीब और गरीब सिंफ बन गई, यानी क्या चीज है उर्दू असनाफ शायरी की जो उसमें मौजूद नहीं है? उसमें कसीदे का तमतराक है, उसमें हजव की काट है, उसमें गजल का तगज़ुल है, कौन सी चीज है जिसको
3: मतलब?
2: और शायद जो बात किदवाई साहब ने कही वो तवज्जह तलब है कि जरूरत थी कि अपनी तरफ शायर तवज्जह को मुल्तफित रखे, लिहाजा जो रास्ता अनीस अपने लिए बना रहे थे, दबीर को उससे मुनफरिद रास्ता बनाना था और उन्होंने उस रास्ते को बनाया। अनीस ने तगज़ुल और सलासत से काम लिया, यानी अनीस जब तलवार की तारीफ करते हैं, ये कोई बात करते हैं तो वो इस तरह से जो आदमी के लिए उसके रूह में सरायत कर जाती है। तलवार की तारीफ में एक बंद है, मैं एक पेश करता हूं कि धार ऐसी के रवा होता है धारा जैसे
3: जी,
2: घाट वो घाट के दरिया का किनारा जैसे, चमक ऐसी के हसीनों का इशारा जैसे, रोशनी वो के गिरे टूट के तारा जैसे, कौंदना बर्क का शमशीर की जौ में देखा, कभी ऐसा नहीं दमखम महे नौ में देखा।
1: क्या बात है।
2: अब मरसिये में तलवार की काट और तलवार की तारीफ और तलवार की खूबसूरती को बयान करने के लिए जो तरीका अख्तियार किया गया, उसने वाकईतन मरसिये को एक मजहबी सिंफ से निकालकर अदबी सिंफ बनाया।
0: नहीं नहीं, मजहबी सिंफ तो वो इस माना में है ही नहीं कि फ्रॉम ए टू जेड वो कोई मजहब की तलकीन करती हो, नॉट सो, ये तो गलत फहमी है। अलबत्ता उसके मौजू में मजहबी स्पिरिट शरीक रही है, बस इतना।
1: जाहिर है मजहब को अदब बना देना ये एक अलग बात है और ये सब नहीं कर सकते,
3: बड़ी बात है।
1: और ये अनीस ने या दबीर ने जो काम किया, उसे मजहब को आप उसे अलग नहीं कर सकते, मजहब तो उसकी जड़ में रूह है, लेकिन मजहब को तख्लीकी अमल के से गुजार कर आला शायरी बना देना ये बड़े शायर का ही काम है, ये मैं जाकिर नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता।
3: मैं एक बात ये कहूँ अलवी साहब आपसे कि अनीस और दबीर मरसिये को जहां ले आए थे और जो वो कहना चाहते थे शायद नहीं कह पा रहे थे, वो बात जोश ने कही। जोश के मरसिये मजहबी नहीं है, जोश ने एक अजीम इंसान के किरदार को पेश किया ये कह के कि हक परस्ती, ईमानदारी, सच्चाई, कुर्बानी, इसार, इसको कहते हैं। आप जोश के सारे मरसिये उठा के देख लीजिए, अनीस की बाजगश्त है जबान के एतबार से, बिल्कुल उनका वो लहजा बात, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि मरसिये में रोना पीटना नहीं कर रहे, वो सिर्फ बताते हैं कि ये हजरत इमाम हुसैन एक आम आदमी नहीं थे, एक दुनिया का सबसे बड़ा हक परस्त था।
0: ठीक, बिल्कुल सही, ये इससे पेशतर भी हो चुका था और हमने सिर्फ जोश पर اس بات کو منحصر رکھا، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم شاد کو پڑھتے ہیں
1: جی
0: تو نئی اپروچز

0: के यहाँ हमें मिलती हैं, नया इंटरप्रिटेशन मिलता है जी, नई मिसालियत मिलती है,
1: सही।
0: तरह तरह के। असल में हम अगर एक गोशे पर अपनी नजर जमा कर न रह जाएं तो ये पता चले कि मर्सिए की अदबी हैसियत और नौयत किस जमाने में क्या रही और किस हद तक किस शख्स ने उसमें कंट्रीब्यूट किया आगे बढ़ाने।
2: सही है, सही है। मैं ये समझता हूं कि इस गुफ्तगू से बहुत से पहलू हमारे सामने आए और ये महसूस हुआ कि मर्सिए की तफहीम नौ की जरूरत है।
1: और मर्सिया सिर्फ मजहबी सिर्फ नहीं है,
2: यकीनन नहीं है,
1: ये बहुत बड़ी अदबी सिर्फ है और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे अदब में है। और आगे कही
2: यकीनन,
3: लेकिन मजहब एक तख्लीकी मोटिव है,
1: है
3: और रहा है। आप इकबाल की शायरी को ले लीजिए,
1: लंदन की,
3: आप उसे निकाल के
2: पैराडाइज लॉस्ट
0: को देखिए। इनकार नहीं किया मैंने, ये कहा कि वो उसके अंडर करंट के तौर पर मौजूद है।
3: नहीं नहीं, अंडर करंट नहीं, ऊपर ऊपर हर तरफ मजहब।
1: एक बात और आपसे अर्ज करूं कि ये वो सरजमीन है जिसने तुलसीदास को पैदा किया था, जिसने रामचरित्र मानस
3: जी,
1: लिखा
3: जी।
1: जो बिल्कुल मर्सिया और ये एक जैसे लगते हैं।
2: मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूं कि आपकी गुफ्तगू से बहुत से पहलू मर्सिए के सामने आए और उसके अदबी और तहजीबी अहमियत पर रोशनी पड़ी। मैं ये समझता हूं कि अनीस व दबीर को और बल्कि पूरे मर्सिए के असासे को पढ़ने की और समझने की जरूरत है और उसकी तफहीम की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि मीर अनीस ने ख्वाह वो अपने कलाम के बारे में कहा हो, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उसको मर्सिए के बारे में उनके उस शेर को पेश करूं कि ये फसाहत, ये बलागत, ये सलासत, ये कमाल मोजज़ा गर न इसे कहिए तो है सहर हलाल। और यकीनन मर्सिया हमारी उर्दू जबान और हमारी उर्दू शायरी की एक बहुत अहम
0: असनाफ शेर में से है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
4: समीन, आप मर्सिया निगारी में अनीस दबीर मौजू पर आप यह मुजाकरा सुन रहे थे। अदबी नशर प्रोग्राम के तहत यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है सोज सलाम मर्सिया।

0: I mean, so was Salaam aur Masya. आप सुन रहे थे ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की अशरियात शब के 11 बजे इस्लामी ने पेश है खबरें बरसगीर से।
1: ये आकाशवाणी है बरसगीर की खबरों के साथ मैं फैसल हबीब। तिजारत और सनात के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर के साथ तजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर ख़ारजा डॉ जयशंकर ने सिविल में जो भी कोरिया के अपने हम मनसब चो ह्यून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने अबनाए हुरमुस के जरिए एक आरजी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक ज़ेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं, इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई, आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात वैनकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। तजारत व सनात की मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तजारती उमूर के नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेग और उनके वफद के साथ आज सुबह सिलसिलेवार मीटिंगें की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंगों में भारत और अमरीका के दरमियान जारी तजारती बातचीत की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान इकतसादी शराकतदारी को मजीद गहरा करने के मौके पर

0: अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के बाद आसाम के निचले इलाकों में सैलाब के शदीद खतरात के पेश नजर आसाम हुकूमत ने अपनी तमाम मुतल्लिका एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है, जिसके नतीजे में रियासत के निचले अजला बशमूल धीमाजी, लखीमपुर, बिस्वानाथ और सोनीपुर में पानी की सतह में इजाफा और बहाव की रफ्तार में नुमाया तेजी का खतरा दरपेश है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक दफाई शराकतदारी के फ्रेमवर्क के तहत दफाई ताउन की तरक्की में पेशरफ्त की गर्ज से आज एक मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत दिफा ने मुतला किया कि मीटिंग की मुश्तरका सदारत बैन अल-अक़वामी ताउन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद और मुत्तहिदा अरब अमारात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारी सऊती ने की। पोस्ट में मजीद कहा गया कि तबादले ख्याल में दफाई सनअती शराकतदारी को वसात देने, इख्तरा को फरोग देने, जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तफादा करने और बहरी सलामती में इजाफा करने पर तवज्जो मरकूज की गई। फीफा वर्ल्ड कप में आज कनाडा के वैनकोर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। एक और मैच में वाशिंगटन के सेटल स्टेडियम में बोसनिया और हर्जेगोविना का मुकाबला कतर से होगा। इससे पहले मैक्सिको के शहर ग्वादालाजारा में कोलंबिया ने जमहूरिया कांगो को 1-1 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया। अमरीका के शहर ह्यूस्टन में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-5 से हराया। 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 किए। इस तरह वो वर्ल्ड कप के 6 मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड और घाना का मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर खत्म हुआ, जबकि क्रोशिया ने पनामा को 1-1 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेव के साथ तजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने सिवल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब चो होयोन के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने अबनाए हुरमुज के जरिए एक आरजी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात वैनकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के शुरिया। जैसा मेरा पेश है सो सलाम मर्सिया और नुहा।

سلام مسیح نوحا سن رہے تھے، یہ سو سلام اور مسیح سنتے ہیں.

0: आराम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने शुमाल मशरकी खित्ते, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, तेलंगाना, साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा के मुख्तलिफ मुकामात पर कल शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। महकमे ने महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मगरबी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि अगले दो दिनों के लिए बिहार में भी इस तरह के मौसम की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मगरबी राजस्थान में कल धूल भरी आंधी की पेशगोई की गई है। महकमे के मुताबिक शुमाल मशरकी बहिरा अरब, गुजरात और मध्य प्रदेश, नीज महाराष्ट्र के बकिया हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और झारखंड में जुनूब मगरबी मानसून मजीद पेशगर्मी कर गया है। इस दौरान आज शाम कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की से औसत बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फीफा वर्ल्ड कप में आज कनाडा के वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। एक और मैच में वाशिंगटन के सिएटल स्टेडियम में बोस्निया एंड हर्जोगोविना का मुकाबला कतर से होगा। इससे पहले मैक्सिको के शहर गुआडालाजारा में कोलंबिया ने जमहूरिया कांगो को 0-1 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया। अमेरिका के शहर हॉस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से हुआ, जिसमें पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 0-5 से हराया। 41 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इस तरह वो वर्ल्ड कप के 6 मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रियर के साथ तजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब चो ह्यून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने आबनाए हॉर्मुज के जरिए एक आरजी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सलाम।

0: सामीन सुनसलाम और मस्ती, आप सुन रहे थे ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात है। 12:50 हुए सामीन, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तनवीर से खबरें सुनिए। पहले खबरों की सुर्खियां। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रियर के साथ तजारती मुजाकिरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हम मनसब चो ह्यून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने आबनाए हॉर्मुज के जरिए एक आरजी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। असम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात वैनकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। तजारत व सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तजारती अमूर के नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रियर और उनके वफद के साथ कल सुबह सिलसिलेवार मीटिंगें की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंगों में भारत और अमरीका के दरमियान जारी तजारती बातचीत की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी शराकतदारी को मजीद गहरा करने के मौके के इम्कान की तलाश की गई। उन्होंने सफीर गियर की क्यादत और बातचीत को एक तामीरी समत देने की फाल कोशिशों की सताइश की। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मौजूदा आलमी चैलेंजों के दौर में भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया जाना नहायती अहम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुश्तरका अखदार और बाहमी एतमाद रखने वाले मुल्कों को एक दूसरे के साथ ज्यादा करीबी ताउन करना चाहिए। सियोल में जनूबी कोरिया के वजीर खारजा चो ह्यून के साथ मीटिंग के आगाज में अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा बैन अल-अक़वामी हालात काबिल एतमाद शराकतदारों के दरमियान ताउन को पहले से ज्यादा अहम बना रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कल शाम जनूबी कोरिया के कौमी सलामती के डायरेक्टर वी सून लैक से भी मुलाकात की। बाद में सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान आलमी हालात वाकयात और भारत बहरुल काहिल खित्ते से मुतालिक अहम स्ट्रेटेजिक उमूर पर मुफीद और नतीजा खेज बातचीत हुई। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के फ्रेमवर्क के तहत दिफाई ताउन की तरक्की में पेशरफ्त की गर्ज से एक मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत दफा ने मुत्तला किया कि मीटिंग की मुश्तरका सदारत बैन अल-अक़वामी ताउन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद और मुत्तहिदा अरब अमारात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जौती ने की। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि तबादला ख्याल में दिफाई सनती शराकतदारी को वसत देने, इख्तिरा को फरोग देने, जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने और बहरी सलामती में इजाफा करने पर तवज्जो मरकूज की गई। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के खलाई इदारों के सरबराहों की मीटिंग 2026 बेंगलुरु में इख्तिताम पजीर हुई। साइंस व टेक्नोलॉजी और खला के वजीर मम्लिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अख्तितामी इजलास में शिरकत की और आलमी सतह पर खलाई सरगर्मियों में भारत के बढ़ते हुए रोल को उजागर किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दो रोजा मीटिंग में 10 ममालिक के 26 मंदूबीन ने शिरकत की, जिनमें इसरो, इन स्पेस और खला के महकमे के नुमाइंदे भी शामिल थे। ओमान ने स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हॉर्मुज के जरिए आरजी बहरी राहदारी को खोले जाने का ऐलान किया है। यह इकदाम तजारती बहरी नकलो हमल की बहाली और उस दायरी बहरान को कम करने की जानिब एक अहम कदम करार दिया गया है, जिसके बाद खलीज में हजारों समंदरी कारकुन फंसे हुए हैं। ओमानी हुकूमत के मुताबिक ये मंसूबा अक्वामे मुत्तहिदा की बैन अल-अक्वामी बहरी तंजीम IMO के ताउन से तैयार किया गया है, ताकि इलाकाई तनाजियात से पैदा होने वाली कई माह की रुकावटों के बाद आबी गुजरगाह से जहाजों की महफूज आमद और रफ्त को यकीनी बनाया जा सके। बैन अल-अक्वामी बहरी तंजीम के मुताबिक खित्ते में 11,000 से ज्यादा बहरी कारकुन फंसे हुए हैं और जिन्हें मरहलेवार तरीके से निकाला जाएगा और आमद और रफ्त के मंसूबे के तहत मदद फराहम की जाएगी। ईरान में वाकई भारतीय सिफारतखाने ने ईरान में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी के मद्देनजर भारतीय शहरियों के लिए सफर से मुतालिक नजरेसानी शुदा एडवाइजरी जारी की है। सिफारतखाने ने हालिया मुस्बत हालातों वाकयात और मजमुई सूरत हाल में बेहतरी के तनाजुर में भारतीय शहरियों को ईरान के सफर के बारे में संजीदगी से गौर करने का मशवरा दिया है। एडवाइजरी के मुताबिक भारतीय शहरियों को आइंदा इत्तला तक ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। सिफारतखाने ने कहा है कि जो भारतीय शहरी इस वक्त ईरान में मुकीम है या नागुजीर वजूहात की बिना पर ईरान का सफर करना चाहते हैं, वो इंतहाई एहतियात बरते, सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखें और मुकामी हालात से बाखबर रहें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में कल शदीद बारिश और अचानक सैलाब के सबब केई पानियोर जिले के तहत याजाली सर्कल में नीपको कॉलोनी में भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद लापता है। हुकाम ने अभी किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की है, अलबत्ता अभी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, तफसीलात का इंतजार है। नीपको के प्रोजेक्ट के सरबराह ने मुतला किया कि 17 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत संगीन है। संगीन तौर पर जख्मियों को इलाज के लिए बजरिया एम्बुलेंस 0 ले जाया गया है। वजीर आला पेमा खांडू ने मुतासरीन और उनके कुंबों से ताजियत का इजहार किया है, जो अपने अजीजों के बारे में पता चलने का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी की है कि हुकूमत मुतासिरा कुंबों के साथ मजबूती से खड़ी है और बचाव, राहत और तिब्बी मदद फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश और अचानक सैलाब के तनाजुर में असम सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के बाद असम के निचले इलाकों में सैलाब के शदीद खतरात के पेश नजर असम हुकूमत ने अपनी तमाम मुतल्लिका एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है, जिसके नतीजे में रियासत के निचले अजला बशमूल धीमाजी, लखीमपुर, बिस्वनाथ और सोनितपुर में पानी की सतह में इजाफा और बहाव की रफ्तार में नुमाया तेजी का खतरा दरपेश है, जबकि अगले 1 से 2 दिन के दौरान सैलाब के मजीद आगे बढ़ने का इम्कान है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने शुमाल मशरिकी

0: झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा के मुख्तलिफ मुकामात पर कल शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। महकमे ने महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मगरबी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि अगले दो दिनों के लिए बिहार में भी इस तरह के मौसम की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। फीफा वर्ल्ड कप में आज कनाडा के वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू हुआ। एक और मैच में वाशिंगटन के सिएटल स्टेडियम में बोस्निया एंड हर्जोगोविना का मुकाबला कतर से होगा। इससे पहले मैक्सिको के शहर ग्वाडा लाजारा में कोलंबिया ने जमहूरिया कांगो को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रियर के साथ तिजारती मुजाकिरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने अम्मन सब चो ह्यून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने आबनाए हॉर्मुज के जरिए एक आरजी बहरी राहदारी को खोलने का ऐलान किया है। अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। असम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के अशरियात। सवेन शो का एक बजे चाहता है और दूसरा विस्त की आज की तीसरे मजलिस की अशरियात अब इख्तिताम पज़ीर होती है। कल सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। शब खैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिये। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत गीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल

0: निशनियंक और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की संघीय न्यायाधीश टेनिसन कैस्पर ने कहा कि चुनावों को विनियमित करने का अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार इवान सेपेडा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उन्होंने दक्षिणपंथी कारोबारी एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने बेहद कम अंतर से पराजित किया है। हार स्वीकार करते हुए श्री सेपेडा ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। वहीं अंतिम आधिकारिक मतगणना की प्रक्रिया अभी जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi. During the meeting, Mr. Modi reviewed four major infrastructure projects in the road, power, industrial, corridor and metro rail sectors across four states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The PM directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi also reviewed grievances related to cybercrime and digital arrest cases, expressing concern over the growing misuse of digital platforms to defraud citizens. He called for intensified public awareness campaigns and directed stakeholders to strengthen systems for prevention, reporting, investigation and grievance redressal in cyber fraud cases. The PM's office informed that the meeting also reviewed the TV Mukt Bharat Abhiyan. The PM highlighted the importance of leveraging emerging technologies, including artificial intelligence, in the fight against tuberculosis. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer and his delegation in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries. He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. India and Tajikistan held the fifth meeting of the Joint Working Group on Counterterrorism in Dushanbe yesterday. Ministry of External Affairs said that during the meeting, both sides discussed threats posed by terrorist groups globally and in their respective regions. The two sides also discussed measures to strengthen bilateral cooperation in the field of counterterrorism through enhanced information sharing, capacity building, and the exchange of best practices. In West Bengal, rescue operations are in full swing after an under-construction godown collapsed, trapping workers beneath heavy iron debris near Taratala in Kolkata yesterday. Five people were declared dead at the SSKM hospital and the injured are being treated there. Chief Minister Suvendu Adhikari visited the accident site and lauded the efforts of rescue personnel.

आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हो गया है रात्रि के 1:10 और ये समय है पुरानी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म तानसेन से ये गीत KL सहगल साहब की आवाज में।

अवलगित श्रोताओं, ये सुनते हैं फिल्म हॉस्पिटल से करुण देवी की आवाज में।

गीत आइए सुनते हैं फिल्म आवारा से मुकेश साहब की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिये। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिये। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये एक दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत के जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जिम्बाब्वे के

सर्वी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गजल कोई फरियाद।

जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपने सुनी। और लीजिए अब पेश है शमोना राय बसवास की आवाज में ये गजल।

0: योजना का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजने वाले हैं।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आकाशवाणी दिल्ली का ये एआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 4:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वालन वादन। कलाकार है टीके जयराम अय्यर। संगीतकार हैं त्यागराजा। आपके साथ मृदंगम पर संगीत किया है रामानंद ऐश्वर्यन ने और आपने प्रस्तुत किया है राग श्री रंजनी जो आविताल में निबद्ध है। तो जी प्रस्तुत है टीके जयराम अय्यर का वायलिन पर राग श्री रंजनी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे वायलिन वादन। कलाकार थे टी के जयराम अय्यर। आपने प्रस्तुत किया लाल श्री रंजनी जो आर्यताल में निबद्ध था। संगीत दिया था त्यागराजन ने। आपके साथ मृदंगम पर संगत किया था रामानंद ऐश्वरन ने। आकाशवाणी मालिका ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

हुई आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरी मेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर आज बृहस्पतिवार है। शिवसमत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि तदनुसार 25 जून 2026 सुबह के 4:53 हुए हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। कुछ देर में यानी सुबह 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप जानकारी लेंगे योग तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास परीक्षा का। 5:20 पर सुनेगा देशभक्ति गीत। हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का समय रहेगा 5:30। इसके अंतर्गत आज प्रसारित किया जाएगा उस्ताद अहमद रजा का बजाया विचित्र वीणा भजन। प्रस्तुत करेंगे राग अहिरी तोड़ी। सुबह 6:10 पर सुनेगा वंदना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 6:40 पर सुनेगा चिंतन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ सुनेगा। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 97। संस्कृत में समाचार का समय रहेगा सुबह 6:55 पर और फिर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुनूंगा संगीत का आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे संचिता रॉय की गाय गई। साढ़े 7:00 सुनूंगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग। संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा आप सुन सकेंगे सुबह 8:45 पर। आज आप सुनेंगे रितविल सन्याल का गाया राग जौनपुरी। 9:15 पर सुनेगा उद्योग पत्रिका। आज का विषय रहेगा फार्मेसी प्रबंधन शिक्षा प्रशिक्षण और अवसर। 9:30 सुनेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दिन है। प्रस्तुत करेंगे बलविंदर कौर। 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। स्वरांजलि का समय रहेगा सुबह 11:10। साथियों ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 5:00 वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋ ਜੀਵਾਗੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾ

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: Thank you.

0: गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर कर न जाय। तो ती टिकात है जब माली तान मले साखाय। अंतर पूजा पण एक दे संजम तुरका भाई। छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला।
1: मानस खाने करहने वा छुरी बगाय तिन गल ताग। तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओ ना पहया वे ओई साथ कूड़ी रास कूड़ा वा पार कूड़ बोल करे आर। शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे पर मथै टिका तिर धोती का खाई हाथ छुरी जगत का सार। नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश धान लै पूजे प्राण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसै न जान। देखै चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़े यार। मत पिटै वे मत पिटै ए तन साडा पिटै। तन फिटै फिर करे न मन जूठै चुली प्रेम। कहो नानक सच त्याई है सच होवे ता सच पाई है।

0: जे कर सूतक मनिए सत्य सूतक हो गोए ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जे ते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जीव है जित हरे सब कोए सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवे सोए नानक सूतक एवना उतरे ज्ञान उतरे तोए महला पहला
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रया पर तन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खार नानक हंसा आदमी बधे जमपुर जाहे महला पहला सबो सूतक परम है दूजे लग जाए जबन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो रिजक संभाहे।